0: श्रोताओं अब सुनिए अनमोल विचार।
1: गुस्से में कभी भी गलत मत बोलिए, क्योंकि शब्द दिल में इतनी गहरी चोट कर जाते हैं जिनका दर्द शरीर पर लगे घाव से भी अधिक होता है। शरीर पर लगा घाव वक्त के साथ भर जाता है, पर शब्दों से लगे घाव लकड़ी पर ठोकी गई कील की भांति गहरी चोट कर जाती है, जिसे भर पाना आसान नहीं होता। जिस प्रकार लकड़ी पर ठोकी गई कील लकड़ी से निकाल लेने के बाद भी अपना निशान छोड़ जाती है, वैसे ही कही गई कटु वचन हृदय में हमेशा के लिए गहरी निशान छोड़ जाती है। इसलिए गुस्से में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, ताकि किसी के हृदय को आहत ना पहुंचे।
0: श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रभाती वंदना। इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।

0: श्रोताओं, इस भजन के साथ ही कार्यक्रम प्रभाती वंदना यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज कुछ बातें पान के संदर्भ में। जी हाँ, पान लता वाली एक नकदी फसल है। पान के पौधे अत्यंत कोमल होते हैं, अतः समय विशेष एवं मौसम विशेष में इसकी देखरेख की जरूरत होती है। हमारे यहाँ पर पान का उपयोग सभी उत्सवों, शादी, पूजा आदि धार्मिक अनुष्ठानों में पुराने समय से होता आ रहा है। आजकल हर उम्र के लोग खाने के लिए पान का प्रयोग करते हैं। इससे मुंह की बदबू दूर करने, मसूड़ों को मजबूत करने एवं पाचन शक्ति को बढ़ाने तथा मानसिक स्थिति ठीक रखने में सहायता मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, पान के साथ तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पान की अच्छी फसल के लिए भूमि का चुनाव बहुत जरूरी होता है। देशी पान के लिए मटियार मिट्टी काफी अच्छी होती है। इसके अलावा अन्य किस्में जैसे बांग्ला, सांची, मगही आदि बलुई मिट्टी में अच्छी उपज देती है। भूमि का चुनाव करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जमीन ऐसी हो जिसमें जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो। सबसे पहले खेत की 1 फीट गहरी खुदाई करके जमीन को भुरभुरा बना लें। इसके बाद खेत के चारों ओर 2 मीटर के अंतर पर करीब 3 मीटर लंबे बांस को मजबूती से गाड़ दें। इसके बाद खेत में पूरी लंबाई में 1 मीटर चौड़ी पंक्तियां बनाएं। प्रत्येक पंक्तियों में 1 से 1.5 फीट चौड़ा रास्ता बनाते हैं। रास्ते के दोनों तरफ बांस के 3 मीटर लंबे पट्टे को 2 मीटर की दूरी पर तिरछा करके गाड़ देते हैं और इसके ऊपर पुआल की हल्की छत तैयार करते हैं, जिससे कि सूर्य का प्रकाश, हवा एवं पानी छन छन कर पान की लताओं को मिलता रहे। बेलों के लिए कटिंग स्वस्थ, रोगमुक्त तथा 1 साल पुरानी लताओं से लेनी चाहिए। ये कटिंग लता के अग्रभाग से 2 से 3 फीट नीचे से लेनी चाहिए। पान की फसल में प्रायः उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाता है। नीम की खली के साथ मटर का बेसन मिलाकर देने से ज्यादा फायदा होता है। 1 एकड़ के लिए 2 क्विंटल खली तथा 20 किलोग्राम बेसन डालने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि किसान भाई नीम की खली एवं बेसन नहीं डालना चाहते तो वे बुवाई के पहले 30 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं फास्फोरस डालकर रोपाई करें तथा बाद में 25 से 30 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लाएं। पान में भी कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप होता है। पान में पत्तियों में धब्बे की बीमारी लगती है। इससे पत्तियों में काले गोल धब्बे बन जाते हैं। बाद में इनका प्रभाव तने पर भी हो सकता है। पान की फसल में जड़ सड़न का रोग भी लगता है। जड़ सड़न के कारण पान में पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो नष्ट होने लगता है और पत्तियां मुरझा जाती हैं। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। इन दोनों बीमारियों से बचने के लिए बेवस्टिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेवस्टिन फफूंद नाशक के 0.2% घोल का छिड़काव कर आप इन बीमारियों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, पान की फसल में कुछ एक कीड़ों का भी प्रकोप होता है। समय समय पर अपनी फसल की निगरानी करते रहें तथा जैसे ही कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप नजर आए फसल सुरक्षा विशेषज्ञों से सलाह लेकर आवश्यक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जरूर करें। यदि आप बताई गई रीति से वैज्ञानिक तरीके से पान की खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छी फसल प्राप्त कर लाभान्वित हो सकेंगे।
0: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए

एमवी रानीचंगा 19 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा और डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा 20 तारीख को सवेरे 7 बजे। एमवी सेंटिनल श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे जाएगा और कल ही रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कालीघाट 19 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार के लिए चलेगा तथा कार्निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा 20 तारीख को शाम 4 बजे। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तेरेसा कचाल और ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम से कैम्बलबे के लिए यात्रा करेगा 25 तारीख को सवेरे 7 बजे। कैम्बलबे से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम आएगा 28 तारीख को रात 8:30 पर। एमवी कालीघाट श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैम्बलबे जाएगा 23 तारीख को सवेरे 9 बजे और कैम्बलबे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम आएगा 25 तारीख को सवेरे 8 बजे। एमवी नॉर्थ पैसेज आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा करेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा आज ही दोपहर बाद 2:30 पर। एमवी हडबे स्वराजदीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा एवं दोपहर 2 बजे स्वराजदीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बाराटांग आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा आरंभ करेगा एवं शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा आज ही शाम 4:30 पर। एमवी कमोटा श्री विजयपुरम से स्वराजदीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे रवाना होगा तथा स्वराजदीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा कल सवेरे 5:30 पर। एमवी हडबे कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाएगा एवं रंगत से चलकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम आएगा कल ही दोपहर 12 बजे। एमवी रानी लक्ष्मी श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर जाएगा और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा कल ही सवेरे 8:30 पर। एमवी नॉर्थ पैसेज कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से स्वराजदीप जाएगा एवं स्वराजदीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा कल ही सवेरे 8:45

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं सीमा आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अरमान। हर इंसान के दिल में अरमान होते हैं। ये अरमान ही है जो हमें आगे बढ़ने, मेहनत करने और अपने सपनों को सच करने की प्रेरणा देता है। जब अरमान बड़े हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। इसलिए अपने अरमानों को कभी छोटा ना समझे, क्योंकि यही अरमान एक दिन आपको पहचान दे सकती है। अरमान वो चिंगारी है जो सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला देता है।

ख्वाबों की चादर में लिपटा है ये दिल, अधूरे अरमानों का सपना सजाए बैठा है ये दिल, प्यार की दुनिया में रखा है कदम बड़े अरमानों से, साथ तुम्हारा हो तो सह लेंगे दुनिया के हर सितम।

व्यक्ति चाहिए। हर अरमान की एक कीमत होती है। अरमान वो नहीं जो सिर्फ बैठ के सोचे जाए, लेकिन उन अरमानों को हकीकत में बदलना आपके ही हाथों में है। कहते हैं कि अरमान अगर सच्चे हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं।

पुत्र अंगद के युवराज घोषित होने के पश्चात श्रीराम तथा लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे हैं। ऋतुचक्र अपनी मंथर गति से घूम रहा है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही राजा, तपस्वी, व्यापारी तथा याचक, जिनका दैनंदिन कार्यकलाप वर्षा के कारण अव्यवस्थित हो गया था, पुनः आरंभ हो गया है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु के आगमन पर वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम समूल नष्ट हो जाते हैं।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 272वीं कड़ी।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए वतन के गीत।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण।

जनसेवाओं और मछुआरों को यह मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार सागर तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक के वेग से चलेंगी। समुद्र काफी अशांत रहेगा, अतः मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी। इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुनिए सवेरे 7:30 पर, जिसके तहत साहित्य दर्पण कार्यक्रम में डॉक्टर एन लक्ष्मी की स्वरचित कविता आप सुन पाएंगे। सवेरे 8:30 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत, फनकार होंगे भूपेंद्र सिंह, पंकज उदास और गुलाम अली। तराने सुहाने आप सुनेंगे सवेरे 9:00। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे पंडित मणि प्रसाद का हिंदुस्तानी शैली में गायन। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल दिन में 10:00, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1308वीं कड़ी दिन में 11:00। 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर कुछ फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। दोपहर 1:10 पर महफिले कवाली, जिसमें आप सुनेंगे तस्लीन आरिफ और टीना परवीन को। आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर प्राइमरी चैनल पर हमारे कार्यक्रमों की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत दोपहर बाद 2:30 पर आप सुनेंगे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स, तथा दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो की प्रस्तुति होगी। शाम 4:00 हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 11वीं कड़ी शाम 4:30 पर। कार्यक्रमों का विवरण आप सुनेंगे शाम 4:40 पर। शाम 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम में बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में कुछ आधुनिक गीत आप सुन पाएंगे। और शाम 6:00 होगा कार्यक्रम कृषि जगत। फिल्म सॉन्ग्स दर्द भरे नगमे शाम 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 7:05 पर। शाम 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीत दिल ने फिर याद किया शाम 7:20 पर। शाम 7:30 पर हमारे युवाओं के लिए हम लाएंगे कार्यक्रम युवाणी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। और रोजगार समाचार सुनेंगे आप रात 8:35 पर। और रात 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:00 सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे। रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट चर्चा का विषय है सुनिए रात्रि 9:30 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इस समय सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीविजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 1.3 मिलीमीटर वर्षा हुई। सवेरे 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 95% और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 31.3 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:56 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:45।

ये थी मौसम की जानकारी। और अब एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिल्ली से श्रीविजयपुरम आएगा दिन में 11 बजे तथा यात्री विमान उड़ान संख्या 2936 श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान संचालित करेगा दिन में 11:40 पर। अभी आप एयर इंडिया से प्राप्त उड़ान संबंधी जानकारी सुन रहे थे। एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:05 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। द्वीप समूह में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत संरक्षित खेती योजना लागू की जा रही है। भूमि संसाधनों की रक्षा करने के उद्देश्य से आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है। कला एवं संस्कृति निदेशालय रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए 25 जून से थिएटर कार्यशाला आयोजित

करेगा और लेह लद्दाख में आयोजित होने वाले विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में द्वीप समूह से 9 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी द्वीप समूह में जलवायु अनुकूल और उच्च मूल्य वाली बागवानी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026-27 के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत संरक्षित खेती योजना को लागू कर रही है। संरक्षित खेती किसानों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति से निपटने, पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। इस परियोजना के तहत पात्र किसानों को संरक्षित खेती संरचनाएं स्थापित करने के लिए 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये सहायता प्राकृतिक रूप से हवादार पॉली हाउस, बांस, केबल पर्लिन पॉली हाउस, शेड नेट हाउस और वीट मैट के लिए उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों और संबंधित विस्तार कर्मचारियों से संपर्क किया जा सकता है। भूमि संसाधनों की रक्षा करने और भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण तथा सूखे से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये आयोजन सरकारों, संस्थानों और समुदायों को पर्यावरणीय सुरक्षा और भविष्य की पीढ़ियों को कल्याण के सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ भूमि उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष का विषय चारागाह पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें है। भूमि क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से वनस्पतियों को नुकसान, मिट्टी का कटाव, पानी की उपलब्धता में कमी, जैव विविधता में गिरावट और जलवायु से संबंधित आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। इस अवसर पर लोगों से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा करने को कहा गया है। अपराध एवं आर्थिक अपराध पुलिस थाना में हाल ही में दर्ज FIR की जांच जारी है। जांच के दौरान मेटालाइट्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जयंत विश्वास द्वारा नया शहर में कार्यालय स्थापित कर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर द्वीप समूह के लोगों को ऊंचे रिटर्न के आश्वासन पर पैसा लगाने का मामला सामने आया। उन्होंने विभिन्न निवेशकों से लगभग 44 लाख रुपए की राशि एकत्र की है। पुलिस ने ऐसे सभी निवेशकों जिनके इस लेन देन से संबंधित कोई दावा, शिकायत या प्रासंगिक जानकारी है, उनसे जल्द से जल्द जांच अधिकारी उप निरीक्षक साजी मैथ्यू से संपर्क करने को कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों के मद्देनज़र अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे आवश्यक मरम्मत और रखरखाव के चलते नेताजी स्टेडियम खेल परिसर स्थित मल्टीपर्पस इंडोर स्पोर्ट्स हॉल आज और कल बंद रहेगा। इस अवधि के दौरान बैडमिंटन और टेबल टेनिस की सभी गतिविधियां निलंबित रहेंगी। खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से मायाबंदर में खेलो इंडिया केंद्र अब तत्काल प्रभाव से दोबारा खोल दिया गया है। ये केंद्र 10 से 20 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों को निशुल्क फुटबॉल कोचिंग प्रदान करेगा। इस केंद्र के लिए पूर्व चैंपियन एथलीट के सत्यराज को कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। 10 से 22 वर्ष के आयु वर्ग के इच्छुक खिलाड़ी नेताजी स्टेडियम मायाबंदर में अपना नामांकन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कोच के सत्यराज से संपर्क किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है थिएटर कार्यशाला और विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कला एवं संस्कृति निदेशालय रंगमंच को बढ़ावा देने के अपने प्रयास के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से थिएटर कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है। 25 जून से शुरू होने वाले इस माहव्यापी कार्यशाला में इच्छुक कलाकारों से आवेदन मांगे गए हैं।

हैं। कार्यशाला के लिए केवल 30 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रतिष्ठित संकायों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को अभिनय प्रशिक्षण दिया जाएगा। समापन अवसर पर एनएसडी द्वारा एक नाटक का मंचन भी किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून है। अधिक जानकारी के लिए कला एवं संस्कृति निदेशालय से संपर्क किया जा सकता है। लेह लद्दाख में आयोजित होने वाले विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में द्वीप समूह के विभिन्न कॉलेजों से 9 सदस्यीय युवा प्रतिनिधि मंडल भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम कल से 25 जून तक चलेगा। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेतृत्व, स्वयं सेवा, राष्ट्रीय अखंडता, व्यवहारिक शिक्षा और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ जुड़े राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सक्रिय युवा भागीदारी को बढ़ावा देना है। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में विभिन्न विषयों में अतिथि संकाय का पैनल तैयार करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इस पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार अब 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इस बीच कॉलेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षण संस्थान के घटक अंडमान कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में अतिथि संकाय का पैनल तैयार किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को ₹1,500 प्रति व्याख्यान का भुगतान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 तक हो सकती है। ये नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी होगी। विस्तृत नोटिस, आवेदन फॉर्म और सेल्फ मार्किंग प्रोफार्मा कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। पूरी तरह से भरे हुए आवेदन फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ 29 जून दोपहर 3:30 बजे तक कॉलेज के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य बाल संरक्षण समिति की ओर से बाल अधिकारों, शिक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस के अवसर पर सेवानिकेतन डेयरी फॉर्म में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और सालसा के सदस्य सचिव राशिद आलम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज कल्याण निदेशक रविंद्र कुमार, श्रम विभाग के अधिकारी, बाल देखभाल संस्थानों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक भी मौजूद थे। मुख्य अतिथि ने कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए, क्योंकि ये बाल अधिकारों, संरक्षण और कल्याण के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान बाल देखभाल संस्थानों का संचालन करने वाले विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रभारियों को बच्चों की देखभाल, संरक्षण और विकास के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। द्वीप समूह में अगले 5 दिनों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार एक दो स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की आशंका है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वीप समूह में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत संरक्षित खेती योजना लागू की जा रही है। भूमि संसाधनों की रक्षा करने के उद्देश्य से आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है। कला एवं संस्कृति निदेशालय रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए 25 जून से थिएटर कार्यशाला आयोजित करेगा। और लेह लद्दाख में आयोजित होने वाले विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में द्वीप समूह से 9 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी। आज हम आपको एक ऐसी गीतों की यात्रा पर ले जा रहे हैं जिसमें देश प्रेम, बलिदान और भारत की महानता का संदेश है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो भारत की मिट्टी की महक से सराबोर है।

श्रोताओं, भारत केवल एक देश नहीं बल्कि विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं से बनी एक महान भावना है। हमारी आज़ादी, सुरक्षा और सम्मान के पीछे भारतीय सैनिकों का अथक परिश्रम और बलिदान छुपा है।

हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक और समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक भारतीय सैनिक हर चुनौती का सामना करते हुए तिरंगे की शान बनाए रखे हुए हैं। श्रोताओं, इसी के साथ मैं दीपिका अब इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

घटा, काजल कालिक दहल उठा, गरजे मेघ मुस्काई धरा, पुलकित पुष्पित वसुंधरा। मिलन की बेला जब होगी खास, मिलन की बेला जब होगी खास, रे

अब मैं कुछ दोहे सुना रही हूँ। दोहे अंडमान के। खाड़ी में बंगाल की तट पर इसके दीप, खाड़ी में बंगाल की तट पर इसके द्वीप, तारे ये टिमटिम करें ये जुगनू के दीप, तारे ये टिमटिम करें ये जुगनू के दीप। है विशाल सागर सतल कानन घना पहाड़, है विशाल सागर सतल कानन घना पहाड़, शोभित ये सदियों रहा एकांत से जुगाड़, शोभित ये सदियों रहा एकांत से जुगाड़। काला नीला जल भरा लवण सा सागरांत, काला नीला जल भरा लवण सा सागर।

विभ्रांत, काले मेघों से सदा अंबर भी आक्लांत। हरित नवल यह वनस्थली, वन देवी का वास, नारिकेल झूमे यहाँ मिले सुपारी खास। छोटे हों या हों बड़े, द्वीपों के आकार लगते दीप समान है खड़े हुए साकार। 572 द्वीप हैं बिखरे मोती मान, 32 में आवास है शेष वनों की खान। भारत की ये शान है, दक्षिण का है द्वार, अंतिम बिंदु तक बसा भारत का विस्तार। खाड़ी में बंगाल की तट पर इसके द्वीप, तारे ये टिमटिम करें ये जुगनू के द्वीप। एक कविता है कोशिश। आज धारा का रुख बदल कर देख लो, एक बार ही सही कोशिश करके देख लो। कब तक यूं चलते रहोगे धारा के संग, कब तक यूं चलते रहोगे धारा के संग। राह अपनी जरा मोड़ कर देख लो, कोशिश करके तो देख लो। आज धारा का रुख बदल कर देख लो। कठिन है, कठिन है किंतु नामुमकिन नहीं, कठिन है किंतु नामुमकिन नहीं। ठान मन में गर तुम जमाने से लड़कर देख लो। सुख दुख का दरिया पार करके तो देख लो, सुख दुख का दरिया पार करके तो देख लो। एक बार ही सही कोशिश करके देख लो, आज धारा का रुख बदल कर देख लो। एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है जीवन। पलकें खुली रोशनी मिली, पलकें खुली रोशनी मिली आशा जगी प्रेरणा मिली, पलकें खुली रोशनी मिली आशा जगी प्रेरणा मिली। पलकें बंद हुई अंधियारी छाई, पलकें बंद हुई अंधियारी छाई, सपनों ने नई उम्मीद जगाई। पलकों का खुलना पलकों का बंद होना, पलकों का खुलना पलकों का बंद होना, है जीवन का सार यही, है जीवन का सार यही, है दुनिया का दस्तूर यही। तो पलकें खुली रोशनी मिली आशा जगी प्रेरणा मिली। एक और कविता है जिसका शीर्षक है जीवन एक वरदान। टेढ़े मेढ़े राहों का लंबा सफ़र, टेढ़े मेढ़े राहों का लंबा सफ़र, अबूझ अनसुलझ शब्दों की कतार, महकती मदहोश सावन की बहार, पतझड़ के रूखे पत्तों का सिंगार। लाखों प्रश्न ज्यों टिमटिमाते तारे, दिन की रोशनी में खोए हैं सारे। रात के सन्नाटे में लगे ये प्यारे, तम से प्रकाश का सफ़र है न्यारे। मंजिल के पथ से टकराती राहें, सहारे की आस में तरसती बाहें। भेद का खुलासा करने मचलती निगाहें, प्रेम भक्ति के बोध से निकलती आहें। सही गलत के बीच उलझा हुआ मन, अपने पराये का गाता गीत गुनगुन। सुख दुख के बारिश में भीगा अनमन, काल चक्र के पहिए से टकराता जीवन। प्रभु का वरदान ये मानव जीवन, रंगीन बसंत बहार का उपवन। फूलों के सुगंध सा महके तन मन, निज ज्ञान प्रकाश का कर दर्शन, निज ज्ञान प्रकाश का कर दर्शन। एक कविता है जिसका शीर्षक है कृष्ण कांता, जिसे मैंने जारवा बच्ची की एक कल्पना के रूप में मैंने लिखा है। जारवा बच्ची का नाम मैंने कृष्ण कांता रखा है। तो चलिए कविता में चलते हैं। वह नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया, वह नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया, कुछ पल अपनी माँ की गोद में खेलती, कुछ पल उसकी छाती से लिपटती। बस में यात्रा कर रहे सहयात्रियों को चुंबक की भांति अपनी ओर खींचती चली जा रही थी। वह नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया कुछ पल अपनी माँ की गोद में खेलती, कुछ पल उसकी छाती से लिपटती। बस में यात्रा कर रहे सहयात्रियों को चुंबक की भांति अपनी ओर खींचती चली जा रही थी। मैं भी उस बच्चे की चंचलता से पुलकित हो रही थी। मैंने उस माँ के चेहरे को देखा, माँ के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। वह भी मेरे चेहरे पर खींची चकित रेखा को और मेरे मन में उठ रहे भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। चूंकि एक माँ दूसरे माँ की हृदय को भली भांति समझ सकती है, क्योंकि एक माँ दूसरे माँ की हृदय को भली भांति समझ सकती है। उस बच्चे को गोद लेने की इच्छा से शायद मेरे हाथ आगे बढ़े और वह भी एकाएक अपनी बच्ची को मेरे हाथ सौंपने को आगे बढ़ी। अगले ही पल उस बच्ची को मैंने अपनी बाहों में भर लिया, अगले ही पल उस बच्ची को मैंने अपनी बाहों में भर लिया। हिलती डुलती बस अपनी रफ्तार में चल रही थी, मेरे ममतामय नेत्र उस बच्ची को निहार रहे थे। श्याम वर्ण की वह बाला थी, चमकती आंखें, बाल घुंघराले, भरे

0: भरे गाल और होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे वह मेरी दुलार वाली भाषा को समझ रही थी। उसकी कृष्ण सी काया देख मैंने उसका नाम कृष्णकांता रख दिया था। उसकी कृष्ण सी काया देख मैंने उसका नाम कृष्णकांता रख दिया था। उसकी माँ उसे किस नाम से पुकारती है मुझे नहीं पता। द्वीपों के आदिम जनजाति की उस गुड़िया का अचानक यूं मेरी बाहों में आना मेरे अंदर ममता और मातृत्व भाव को पुनः सिंचित कर दिया था। सहयात्री भी अचंभित थे। मेरे मन में सवाल उठ रहा था, मेरे बच्चे और इस बच्चे में क्या अंतर है? सिर्फ रंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे समाज में भी तो बच्चे काले होते हैं। तो फिर उनके घुंघराले बाल जो नीग्रो से दिखते हैं, या फिर कुछ और? हाँ, शायद सभ्यता और संस्कृति का भेद हो सकता है। इस दिशा में मेरा मन कुछ और सोचता, उससे पहले ही बस में ड्राइवर की आवाज़ गूंज उठी, सभी उतर जाइए, नाश्ता कर लीजिए, यहाँ बस 10 मिनट के लिए रुकेगी। ड्राइवर की गूंजती आवाज़ ने एकाएक मेरी नींद तोड़ दी। बस रंगत के बस अड्डे पर खड़ी थी। सभी यात्री अपने में मस्त थे, लेकिन मैं कृष्णकांता के मासूम चेहरे को बार बार अपने जेहन में बसाने की कोशिश कर रही थी। सवालों के घेरे में मन को उलझाकर फिर सोने का प्रयत्न करने लगी, क्योंकि यात्रा लंबी थी और बस अपने गंतव्य की ओर गतिमान थी। एक कविता है, रात थमेगी। बड़ी मुद्दत के बाद आज मिली है सुकून की ये रात। मीठी बात और ये मुलाकात। चलो बैठें यहीं सड़क के किनारे आमने सामने, ताकि एक दूसरे को देख सकें। मन के बदलते भावों को आंखें कुछ तो कहती होंगी, बातें दिल में दबती होंगी, ओठों पर मुस्कान दिखेगी, मन के अंदर दर्द छुपेगी। चलो आज हम दोनों बैठ सुकून से दो चार बातें कर लें, मन की गुहार सुन सुना लें। कुछ अपना सुनाओ, कुछ मेरी सुनो। ये रात फिर मिले न मिले, ये पल ये घड़ी फिर मिले न मिले, बात इतनी है खत्म न होगी, रात थमी है थमी रहेगी। बड़ी मुद्दत के बाद आज मिली है सुकून की ये रात।
1: श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर एन लक्ष्मी की स्वरचित कविता सुनी।
2: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं, तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है, और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
3: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
4: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
3: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
4: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
3: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
4: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
3: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
4: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
3: अब हम कर सकते हैं।
4: अब हमें करना होगा।
3: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
4: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
3: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, इस अंतराल के बाद गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीत श्रेया घोषाल की आवाज में, जिस्म से।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए FCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
3: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
4: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: Calling Andaman.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सबसे मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन

0: कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है

0: के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्यौता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट

0: में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines.

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने सुहाने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नमक हलाल से, आवाज आशा भोसले की, संगीत निर्देशन बप्पी लहरी का और गीतकार अंजन।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करते हैं। ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूँ जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते, और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई व सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन छोटी छोटी लापरवाहियों से मुझे उनके पास आने का मौका मिल जाता है। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या?

मोहम्मद रफ़ी, आरडी बर्मन और साथियों की आवाज़ में अब सुनिए शान फिल्म का गीत, संगीतकार आनंद बख्शी। गीतकार आनंद बख्शी व संगीतकार आरडी बर्मन।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित मणि प्रसाद का हिंदुस्तानी शैली में गायन। इनके साथ तबले पर संगति की है उस्ताद फयाज खान ने एवं हारमोनियम पर है दीपक प्रसाद। श्रोताओं, पेश है राग ललित, जो 3 ताल में निबद्ध है।

0: श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
5: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
4: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
5: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
4: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
5: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
4: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
5: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
4: अब हम कर सकते हैं।
5: अब हमें करना होगा।
4: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
5: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
4: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हेलो ब्रदर से। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में, गीत रचना फयाज अनवर की, संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer, backed by India's largest charging network.

0: Network, India Goes Electric.
1: कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म एक मैं और एक तुम से, बेनी दयाल और अनुष्का मनचंदा की आवाज़ों में, गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

कविता कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज़ों में सुनिए फिल्म हम साथ साथ है का गीत। गीत रचना किरण की और संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने।

40-84। श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत, नीरज श्रीधर और अमिताभ नारायण की आवाज़ों में। हसन जहांगीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है ललित पंडित ने।

गली गली में चोर हैं। श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत, मोहित चौहान और अनमोल मलिक की आवाज़ों में। राहत इंदौरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, अब पेश है इरशाद कामिल का लिखा व सलीम सुलेमान के संगीत निर्देशन में तैयार फिल्म जोड़ी ब्रेकर्स का गीत, शफाकत अमानत अली और क्लिंटन सेरेजो की आवाज़ों में।

खूबसूरत श्रोताओं, सुनिए इस फिल्म का गीत। कुमार सानू और कविता कृष्णामूर्ति की आवाज़ों में संजय चील के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

वैलेंटाइंस नाइट, श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत। उस्ताद शकील और सलमान खान की आवाज़ों में इस गीत को लिखा है और वह संगीत से सजाया है अस्तित्वा द बैंड ने।

सोनू निगम की आवाज़ में सुनिए फिल्म वास्तव द रियलिटी का गीत। गीत रचना समीर की और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कहानी का गीत, सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। गीत रचना अन्विता दत्त की और संगीत दिया है क्लिंटन सेरेजो ने।

श्रोताओं, अभी आप फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1308वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: लानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो

0: के निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने, जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है, जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है, जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभदेव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहां तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियां प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी,
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई

0: देखे हैं। ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
1: अच्छा।
0: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
2: अच्छा।
0: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
1: मंगल पांडे।
0: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
2: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था।

0: बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
1: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
2: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
3: दादी फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
2: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
1: अच्छा?
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
5: हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसा चल नहीं सकता।
3: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
6: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे तीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
4: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
6: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
6: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
7: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
8: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।

0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
1: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
2: अरेस्ट करो! मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
1: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: Come, bind a call, take on a mount high, Durant, hospital, Pejo!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गोरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल।

0: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
1: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
0: अच्छा।
1: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
3: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
4: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
5: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
4: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
5: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
4: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
5: अच्छा माँ।
6: माँ।
5: लो, देवेंद्र भी आ गया।
6: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
4: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
5: ठीक है माँ।
6: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
5: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
6: ये देखो दीदी, ये मारा।
5: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
6: अरे ये मारा।
5: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
6: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
5: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
6: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
4: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
5: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
7: हमें अंदर आने दो।
5: अरे क्यों?
8: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
5: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
7: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
8: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
5: अरे
8: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ता से।
5: क्या हुआ? देखो जल्दी,
4: ये क्या है? अरे अरे, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
7: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
5: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
7: ये चाकू देख रही है ना?
5: छोड़ दो,
8: जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
4: अरे, अरे मेरे पास को छोड़ो।
5: मेरी माँ को छोड़ो।
7: चुप चुप, आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
8: अरे सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
4: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
5: देवेंद्र।
6: हाँ दीदी।
5: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
6: अच्छा,
5: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
6: अच्छा।
5: हेलो।
7: हाँ बेटा, बोलो।
5: पापा।
7: हाँ
5: पापा।
7: हाँ बोलो बेटा।
5: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
7: कौन घुसा है?

0: अच्छा तुम घबराओ नहीं, नहीं नहीं तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, है ठीक है।
1: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
2: अच्छा।
1: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ।
3: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
4: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
5: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक।

0: कर, चोरी करेगा।
1: इसी बीच काशू यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
0: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को।
2: हाँ वाह वाह वाह,
0: कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
3: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था, मैं तो डरी गई थी।
0: देखो ना सबकी जान बहादुर
3: है मेरी बच्ची।
1: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1308वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोहरा से। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में, गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है विजू शाह ने।

0: कुमार सानू की आवाज़ में सुनिए फिल्म दिल जले का गीत। गीत रचना जावेद अख्तर की और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।
1: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम?

समीर का लिखा हुआ आनंद मिलिंद की संगीतबद्ध। श्रोताओं सुनिए जागृति फिल्म का गीत, जिसे गाया है SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा ने।

समीर का लिखा व आनंद मिलिंद की संगीतबद्ध। श्रोताओं सुनिए, मेरा पति सिर्फ मेरा है फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम ने।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: శ్రోతలు, ఇప్పుడు వనితవాణి కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం.
1: హలో, మే హూ HIV వైరస్, నామ్ తో సునా హీ హోగా. మే ఆప్కా దోస్త్ బన్కర్ ఆప్కే శరీర్ మే ఘుస్కర్ ఆప్కో బీమార్ కర్ సక్తా హూ. मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करते हैं। ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूँ जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते, और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई व सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन छोटी छोटी लापरवाहियों से मुझे उनके पास आने का मौका मिल जाता है। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या?
0: श्रोतलु, इपड़ु अंतरद्वीप ओडला राकपोकल सेवा सूचनल गुरिंची तेलुसुकुंदाम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल।

0: यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर छह राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि छह राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज तीन नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेल्लू और वीपी शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi is set to participate in a series of high-level outreach programs today on the second day of his visit to Avignon in France for the ongoing G7 summit. However, attention is firmly focused on his bilateral meeting with United States President Donald Trump, scheduled for this evening. This will be the first face-to-face interaction between the two leaders since their last meeting in Washington, D.C. in February 2025. During the talks, both sides are expected to deliberate on ways to further strengthen India-US bilateral cooperation across multiple sectors, along with discussions on key regional and global issues of mutual interest. The Prime Minister will also attend a working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All. The session will include G7 member countries, partner nations, as well as representatives from the International Monetary Fund and the Organization for Economic Cooperation and Development. Besides his meeting with the US President Donald Trump, Mr. Modi will participate in a working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting will bring together G7 leaders, partner countries and chief executive officers of leading artificial intelligence companies to discuss the future of digital innovation and responsible AI development. On the sidelines of the summit, PM Modi is also scheduled to hold bilateral meetings with European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Friedrich Merz. Later, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Paris this evening as part of his visit to France. Tomorrow morning, Prime Minister Modi is scheduled to hold meetings with leading chief executive officers. Later, he will participate in the WeaverTech Summit. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. The Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Prime Minister Modi has highlighted that India's defence capabilities have witnessed significant transformation over the last decade, guided by the vision of self-reliance and powered by innovation, technology and indigenous manufacturing. Sharing a thread of MyGov on his social media account, Mr. Modi explained how the country has strengthened its defence capabilities across air, land, advanced indigenous technologies.

0: कौन है रात में भी परेशान करते हैं, सुकून नहीं है, किसका फोन है? हेलो
1: हेलो
0: कौन?
1: हेलो
0: हेलो कौन?
1: मैं बोल रहा हूँ टीना।
0: कौन मैं?
1: मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा पहला आशिक।
0: पहला आशिक? आपने कौन सा नंबर डायल किया है?
1: मैंने 248094, ये आपका नंबर है ना?
0: नंबर तो सही है। आपने किससे बात करनी है?
1: टीना परवीन से
0: बोल रही हूँ। आप?
1: मैं आरिफ बोल रहा हूँ।
0: आरिफ? आरिफ? तुम्हारी इतनी हिम्मत के रात में तुमने मेरे घर फोन किया?
1: इसमें हिम्मत की क्या बात है, हम तो तुम्हारे आशिक हैं, कभी भी कर सकते हैं।
0: अरे आशिक की ऐसी की तैसी, मैं फालतू लोगों से बात नहीं करती, समझे?
1: मैं फालतू आपकी नजर में?
0: बिल्कुल।
1: मैं आशिक हूँ आपका, फालतू नहीं हूँ।
0: अरे ऐसे आशिक 365 सड़कों पे फिरा करते हैं।
1: नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो टीना, मेरा कहना है कि मैं देहरादून आया हुआ हूँ,
0: तो
1: तुम भी आ जाओ, मजा आ जाएगा, यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है।
0: क्या जरूरत, बर्फ खा के सो जाओ।
1: नहीं बर्फ खाने की जरूरत नहीं ना, तुम आ जाओगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
0: ओफो, दिमाग खराब हो गए क्या तुम्हारे?
1: घूमने चलते हैं, अपने मंसूरी भी चलेंगे।
0: मेरे उन्होंने सुन लिया ना?
1: किसने?
0: तो देहरादून में आके फिर
1: क्या करेंगे,
0: ऐसी हजामत करेंगे कि मंसूरी तक खबर फैल जाएगी।
1: हम उनकी हजामत कर देंगे, इसकी मत घबराइए, आप आ तो जाइए।
0: ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ।
1: पैदा हम हो चुके हैं बहुत दिन के,
0: वो तो हमें मालूम है, लेकिन किसी काम के नहीं।
1: अच्छा लेकिन काम?
0: खैर फोन किस लिए किया है?
1: फोन इसलिए किया है कि तुम यहाँ देहरादून आ जाओ गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए, हम दोनों आराम से मौज मस्ती करेंगे यहाँ पर। इसलिए आपसे मेरा कहना है, आप जरा गौर से सुनिएगा
0: क्या?
1: और सामीन आप भी सुनिएगा जो कहने जा रहे हैं हम लोग।

0: रीना जी
1: जी
0: एक कथा याद आया है, सुनिएगा।
1: इरशाद,
0: मोहब्बतों के खजाने लुटा रहा हूं मैं।
1: अच्छा,
0: नजर

0: सोने और चांदी के गहने पहना दूं?
1: हीरे के भी पहना
0: दूं? ओए होए बिक जाओगे समझ लेना, चांद और तारों से मांग सजा दूं। अरे इतना बड़ा झूठ तो किसी ने नहीं बोला, इसलिए कह रही हूँ।

श्रोताओं, अभी आप महफिले कवाली कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम

श्रोताओं, अभी आप महफिले कवाली कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मनपसंद गीतों को सुनने के लिए अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474-234-000। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म फूल बने अंगारे के इस गीत से। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा।

अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म आराधना से। इस गीत की फरमाइश की है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने।

हीरामन वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा, दुतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। हमारे सभी दोस्त सुनना चाहते हैं इम्तिहान फिल्म का गाना, तो आइए सुनते हैं ये गाना।

अब आपको सुनवाते हैं तेरी कसम फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुण वर्मा ने।

पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। हमारे इन सभी दोस्तों ने फरमाइश की है याराना फिल्म के इस गीत के लिए। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

श्रोताओं, अभी आप व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई वायरों में हम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक

0: एक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्यवाहियों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: We are now consistently ranking in the...
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: The growth rate has been very good.
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: NTA is committed. NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
5: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की

0: बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
1: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश।

लीजिए सुनिए मौसम का हाल। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार सागर तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक लाइव फोन आउट कार्यक्रम है, इसलिए आप हमें कॉल ना करें, हम स्टूडियो से ही आपको कॉल करेंगे। और आज जिन श्रोताओं से हम जुड़ेंगे उनकी सूची पहले से ही तैयार है, तो आइए देर ना करते हुए बात करें आज के हमारे पहले दोस्त से। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, मोहनलाल जी बोल रहे हैं राजस्थान से
1: जी। खमागणी हुकम
0: जी। नमस्ते जी, क्या कर रहे हैं आप आजकल?
1: आजकल तो मैं किराना की रेडी लगाता हूँ और आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: जी जी, तो जैसे कि आपने बताया आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, तो कौन सा प्रोग्राम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है?
1: ये एक तो ये और एक रविवार वाला है, और फेसबुक पर भी मैं आपका मित्र हूँ, फेसबुक पर भी कमेंट करता रहता हूँ।
0: जी जी, और आपका पसंदीदा गायक कलाकार कौन है?
1: वैसे तो रफी साहब है और लता जी है
0: जी जी,
1: तो पुराने गायक हमारे पसंद की जाए।
0: जी जी, और आपके जगह के बारे में बताइए, राजस्थान के बारे में बताइए।
1: हमारा रेतीला धोरा धरती से मशहूर है और देखने लायक जैसलमेर भी है, उदयपुर घाटियों का शहर है और जिलों की नगरी है, पुष्कर है।
0: जी जी,
1: और कई तीर्थ स्थल हमारे राजस्थान में, घूमने के लिए आपको एक महीना लगेगा।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मोहनलाल जी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हाँ जी, मैं फिल्म का नाम आपको बता देता हूँ, साजन है और आवाज़ है लता मंगेशकर की, साजन साजन पुकारूं गलियों में कभी फूलों में।
0: जी, और किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गाना?
1: मानक दरिया, उषा बाला देवी, प्रजापत, हेलो फरमाइश, एकता रेडियो के तमाम साथी हमारे साथ है।
0: जी जी, तो धन्यवाद मोहनलाल जी इस कार्यक्रम में आने के लिए। हम पेश करते हैं आपका पसंद का ये गाना।
1: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: नमस्कार सर। मैं चिरमिरी कुराचा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी नमस्कार इंद्रभांग जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आप भी ठीक है सर? मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर मौसम बेहाल है सर, सुबह एकदम धूप तेज किया था, अभी बादल किया है।
0: जी जी,
1: और कहा नहीं जा सकता है कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन बंदिश का मौसम बन जाता है सर।
0: जी
1: और इसके बाद पानी नहीं गिरता है और कभी भी गिर सकता है, नहीं गिर सकता है उसके ऊपर भगवान की सर।
0: और हमारे यहाँ पर भी आजकल पिछले 1-2 हफ्ते से थोड़ी वर्षा हो रही है। जी और जी जी और जी जी
1: बोलिए।
0: बोलिए बोलिए।
1: आज सर मानसून बन रहा है कि कभी कभी मानसून सही बनेगा तो पानी गिरेगा।
0: जी
1: आज मैं अपने पसंद की कराता हूँ फिल्म का नाम में नया
0: जी
1: नैना में बदल कौन, गायिका लता मंगेशकर। सबसे पहले गीत आपने फिल्म विशेषताओं को पूरे भाव से छोटा को आपका फोन विजय फिल्म और बेले मित्री सभी छोटा भाई बहन को सुनते आपके परिवार के रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को और मैडम की सहेलियों को, आपके सोनी फोर जिले अंडमान निकोबार पुलिस को भी भाई बहन को श्रोता और स्टाफ कर्मचारी के भले श्रोताओं को पूरे श्रोताओं से भेज रहे हैं सर।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी जी और तो क्या करते हैं आप आजकल?
1: मैं इसी सेल में सर्विस करता हूँ सर। अभी 5 ही दिन तक घर में हूँ, शनिवार
0: जी
1: की ड्यूटी जाऊंगा,
0: जी जी
1: घर में जो भी काम।
0: तो इंद्रभांग जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पेश करते हैं आपका पसंद का ये गाना।
1: जी सर, कौन सा सर? धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: हेलो
0: जी, कपिल जी बात कर रहे हैं महाराष्ट्र से।
1: सर। जी सर, मैं कपिल बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ।
0: जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: जी, तो आपका दिन कैसे गुजर रहा है आज?
1: सर आज का दिन तो बारिश के हम राह देख रहे हैं,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: बारिश गिरती नहीं है,
0: ओहो
1: गर्मी बढ़ रही है यहाँ पे।
0: जी। तो खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं?
1: खाली समय में सर रेडियो तो हमेशा, मतलब सुबह से ही शुरू होता है, रेडियो चालू होता है मेरा
0: जी
1: सुनना। और खाली समय में मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, किताबा वगैरह
0: जी
1: या
0: जी
1: न्यूज़ पेपर।
0: तो जैसे कि आपने बताया, आप खाली समय रेडियो सुनना पसंद करते हैं, तो कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है?
1: वैसे तो मैं विविध कार्यक्रम सुनता हूँ, और ये पिछले 1 साल से मैं, ये जो आपका विजयपुरम है,
0: जी
1: हेलो, जो आप फोन करके पूछते
0: जी जी
1: हम श्रोताओं से, वो मुझे बहुत पसंद है सर ये प्रोग्राम।
0: जी जी धन्यवाद जी। इसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसे श्रोता हमें और भी प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपना कार्यक्रम और भी अच्छी तरीके से करें।
1: जी सर,
0: जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, इसमें एक गाना रिलीज नहीं हुआ लेकिन मैंने सुना हुआ है ऑडियो में,
0: जी
1: आई मीन लव,
0: जी जी
1: ये
0: जी
1: सुनना था जो के की आवाज में है।
0: जी जी और किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत?
1: ये आप सभी के साथ सुनना चाहूंगा, साथ ही ये गाना मैं मेरी लवली वाइफ अंजू के लिए, बेटे के लिए भी सुनना चाहूंगा, और जो भी वो भी किया ये प्रोग्राम बड़े चाव से न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: जी। तो कपिल जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रस्तुत करते हैं आपका पसंद का ये गाना।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: हेलो।
0: जी, लिली जी बात कर रही हैं श्रीविजयपुरम से।
1: आप कौन? जाकिर जी बोल रहे हैं?
0: नहीं,
1: और तो आपका ऐसी है
0: नहीं, मैं
1: जी,
0: जाकिर
1: मैं
0: जी
1: वही
0: नहीं
1: बोल
0: हूँ।
1: रही
0: जी
1: जी। आपका आवाज उनसे मिलता जुलता है जी। नमस्ते जी, कैसे हैं
0: जी
1: आप?
0: नमस्ते,
1: ठीक
0: मैं
1: है,
0: बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ सर।
0: जी, तो जब हमने आपको कॉल किया, क्या कर रहे थे आप?
1: हम एक्चुअली बताया, मैं बैठ के पीछे ना ये रेडियो रख के गाना सुनने के इंतजार में थी, तभी मैडम का आपका वहाँ का फोन आया, कॉल आया।
0: जी, तो आपने बताया कि आप गाना सुन रहे थे, तो किस तरह के गाने आपको पसंद हैं, नए या पुराने?
1: हमको हमको सर हमको ना ओल्ड गाना पसंद है, क्यों? हम तो मेरा अब आजकल का नया गाना हमको उतना नहीं सर, पुराने

0: गाना हमको पसंद है, लता जी, रफी जी, मुकेश जी।
1: जी, तो आपका हॉबीज क्या है?
0: मेरा हॉबीज क्या है सर? आप तो रिटायरमेंट होकर बैठी है घर में, गाना सुनती, अपना घर का काम हम करती,
1: जी,
0: बस यही है। टीवी वगैरह, सीरियल वगैरह देखती और कुछ नहीं।
1: तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: सर फिल्म का नाम है सीमा,
1: जी
0: उसमें नंदा और सुनील दत्त, शायद पता, हम अपना अंदाजे बोलो, काफी चीजें हम देख के पिक्चर, और वो गाना है ये अभी

0: गाना है सर।
1: जी, बहुत खूबसूरत गाया आपने
0: नहीं कहा
1: जी। किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गीत आप?
0: आपके जितने भी आकाशवाणी के जितने परिवार और बाकी जो भी सुनने वाले सब है, सब सबको डेडिकेट कीजिए मेरे तरफ से गाना।
1: जी, तो धन्यवाद लिली जी इस कार्यक्रम में आने के लिए। हम पेश करते हैं आपका पसंद किया गाना।
0: आपको भी थैंक यू सर फोन करने के लिए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके सर।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
5: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में, और हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ। चलिए बात करते हैं हमारे और भी दोस्तों के साथ। हेलो डियर फ्रेंड।
9: सर नमस्कार
8: जी, गोल्डी जी बात कर रहे हैं?
9: बिल्कुल सर, हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव बुरकुड़ी से गोल्डी बात कर रहा हूँ मैं।
8: जी तो नमस्कार जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
9: सर बहुत बहुत धन्यवाद
8: जी। तो जैसे कि आपने बताया, आप हिमाचल से बात कर रहे हैं, तो वहाँ के कुछ खास जगह के बारे बताइए जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं वैसे टाइप।
9: जी सर, घूमने फिरने की तो बहुत अच्छी जगह, देवी देवताओं के स्थान हैं इधर, बहुत अच्छे अच्छे हैं, बाकी और पहाड़ वगैरह भी है, शिमला भी बहुत अच्छी जगह है।
8: जी जी बिल्कुल। तो खाली समय आप क्या करते हैं आप?
9: सर मैं दृष्टिहीन हूँ, तो मैं ऐसे घर का ही कामकार करता हूँ छोटा मोटा।
8: जी जी। और रेडियो सुनने की दिलचस्पी रखते हैं आप?
9: हाँ जी, सुनते रहते हैं बीच बीच में।
8: जी जी। तो आप रेडियो पे किस प्रकार के गाने सुनते हैं?
9: सर मुझे तो ज़्यादातर सैड सॉन्ग ही सुनता हूँ मैं।
8: जी जी। तो और आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
9: सर मूवी का नाम है राजा हिंदुस्तानी, गाने के बोल है पलदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के।
8: जी जी। तो इस गाने को आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे?
9: सर मेरे दोस्त हैं पुष्कर नाथ शर्मा, पंछी राम शर्मा, रिंकू देवी, राकेश कुमार जी है, धर्मवीर जी है, अमर सिंह साहू जी है, भगवान सिंह परमार जी है और पूर्णिमा जी है, और हमारे बहुत अच्छे श्रोता है असम से हैं, उनका नाम है अनु कुमार भट्टाचार्य।
8: जी जी। तो गोल्डी जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: जी सुमित सर, नमस्ते।
0: जी, नमस्ते। सप्तमी जी बोल रहे हैं शादीपुर श्री विजयपुरम से।
1: जी, मेरा नाम सप्तमी विष्णु कुंडू, मैं शादीपुर विजयपुरम से रहती हूँ सर।
0: जी, तो दिन कैसा गुजर रहा है आज का आपका?
1: आज का तो बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि जस्ट एक प्रोग्राम से आई हूँ, तो आपका जब सुबह कॉल आया तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, फिर बाद में आके तो अटेंड किया, तो एक प्रोग्राम था उसमें से आई, तो बहुत से ज्यादा खुशी हो रहा है जो बहुत सालों के बाद आपसे बात हो रहे है।
0: जी, धन्यवाद जी।
1: क्योंकि आपका ऐसे सुनती है लेकिन कॉल में आया नहीं, लेकिन बहुत साल, एक 2 साल के बाद आपका आवाज सुनाई भी दे रहा है और आपसे लाइव बात कर रही हो। जस्ट अभी एक श्रोता ने जो आपको जाकिर सर का नाम से जो बोला, वो भी बहुत अच्छा लगा, जो सार का नाम से आपको जो गेटिंग मिला ना, वो भी
0: जी
1: सुन के
0: जी
1: बहुत अच्छा लगा।
0: जी
1: जाकिर सर तो हमेशा रेडियो का एक आवाज, एक ताज है, वो तो कभी भी हम लोग नहीं भूल सकते, जब भी सुबह आता।
0: बिल्कुल
1: लेकिन जितना भी आप लोग, जितना भी श्रोता है, आप लोग भी उतना ही काबिल है, जो आप लोगों को भी भूलना नामुमकिन है, नहीं भूल सकेंगे कभी भी, कहीं से भी आवाज आएंगे याद आता जो उछार करते हैं वो, तो अलग बात है जाकिर सर का, और आप लोग भी, और आपको जो आज वो नाम से पुकारा वो सुन के मेरा बहुत वो लगा, जो बोलो सार का नाम से एक का आवाज तो थोड़ा का कुछ असर हुआ।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सप्तमी जी, हमारे इस लाइव फोन आउट कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?

0: सर ये तो मेरे को कोई शब्द नहीं है, क्योंकि सबको पता है जो सप्तमी एक है जो बिना बोल के सब कुछ बोल देता है। इतना टाइम लगता है, सार भी मेरे को बोला जो सबको बोलने के लिए उसका ना पटल के सप्तमी जी कह के है, डेडी ऑन हो जाएगा, उनका बोलना स्टार्ट हो जाएगा। तो खैर ये प्रोग्राम नहीं सर, विजयपुरम का जितना भी प्रोग्राम होता है, जितना भी तारीफ करूँ वो कम है, वो तारीफ का कोई नाम ही नहीं होता है, क्योंकि वो एक शब्द है, वो एहसास है। आज हम लोग जितना भी गाना सुनते, गाना गुनगुनाते, जितना भी दोस्त हुआ, कहीं ना कहीं वो विजयपुरम आकाशवाणी से जुड़े हम लोग। फिर उस आज भी मैं जो प्रोग्राम में गया, वहाँ में भी मेरा बंगाली का जो मैडम है वो बैठा है, तो उससे भी मैं एक बार हम लोग इंटरव्यू दिया, तो वहाँ में भी जाके हम लोग आकाशवाणी से ही बात होती जी, ये होता है, ये चलता है, ये सुनते। तो ये अपना सर सब नहीं इसके बारे में कुछ बोलने के लिए, ये बिना शब्द बस खाली एहसास करो, जो रेडियो है साथ है तो रेडियो है, साथ नहीं है तो रेडियो नहीं है। मेरे लिए तो ये मानना है, क्योंकि मेरे जिंदगी का जैसे मेरा सांस लेना जरूरी होता है, ऐसे मुझे रेडियो सुनना भी जरूरी होता है। सुबह अगर मैं नहीं रेडियो सुनूं तो मुझे ना टाइम का पता चलता, ना काम का पता चला, कुछ भी वो नहीं होता, मतलब एक अलग से एनर्जी खो जाता है। जब मैं वो ऑन कर दूंगी तब जैसे कुछ भी प्रोग्राम चले उसमें, चाहे डॉक्टर का हो या जय जयशीला मैम जी का था, कोई भी कानूनी तो होता है, लेकिन उसको चलना है, सुनना तो मतलब आगे बढ़ने का एक हिम्मत मिलती।
1: तो सप्तमी जी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: गाना तो आज सुनूंगी मैं, गीत फिल्म का है तो उसका जो एक गाना है लता जी ने गाया बहुत खूबसूरत है, और वो भी कहीं ना कहीं वो आकाशवाणी से जुड़ के मैं भी चुना, क्योंकि उसमें गीत भी होता है जो आकाशवाणी से, संगीत भी होता है तो आकाशवाणी से। तो मैं अगर अगर आपका इजाजत हो तो मैं दो लाइन गुनगुनाऊंगी।
1: जी जी बिल्कुल।

0: जो मेरे, और कुछ नहीं बोलूंगी, बस एक बोलना चाहता हूँ, एहसास दिलाना चाहते हो जो आकाशवाणी विजयपुरम है तो सास भी है, नींद भी है, गीत भी है, सब कुछ है। और अभी मैं थोड़ा मेरा दोस्तों को याद कर लूंगी सर।
1: जी जी बिल्कुल याद करिए।
0: सबसे पहले तो आप है, और उसके बाद जितना सुनने वाले श्रोता है आकाशवाणी का सब है, और मेरा बहन लोग है, जैसे भारती जी है, जया जी है, मनिका जी है, सीता जी है, संगीता जी है, सुतपा जी है, और भाई लोग में भी आशुतोष जी है, अनूप जी है, राकेश जी है, गणेश जी है, बसंती लाल जी है, नैना चंद जी है, प्रेमजीत है, केशव है, संतोष भाई है जो मेरा बहुत प्यारा अच्छा सा छोटा भाई है, और अभिजीत भाई है, और आपके लिए पूरा पूरा आकाशवाणी सुनने वाले सबके लिए सर थैंक यू मुझे कॉल करने के लिए, और आपको भी थैंक यू मुझे दोबारा कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद जी,
0: थैंक यू थैंक यू।

0: हेलो डियर फ्रेंड। हेलो
1: हेलो।
0: जी, हुकुम कर्माकर जी बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश से।
1: जी सर, जी सर, थैंक
0: जी नमस्कार जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो बताइए क्या करते हैं आप।
1: सर। सर मैं LIC में जॉब करता हूँ।
0: जी, और क्या हॉबीज़ रखते हैं आप।
1: गाने सुनना, गानों की फरमाइश करना विविध आकाशवाणी केंद्रों पर,
0: जी, तो
1: और उसके
0: जी
1: जी
0: जी
1: सर।
0: बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया आपको गाने सुनना बहुत पसंद है, तो किस प्रकार के गाने सुनते हैं आप, नए या पुराने गाने।
1: नहीं, पुराने गाने बहुत पसंद है। रफी साहब, मन्ना डे, किशोर जी,
0: जी
1: इनकी
0: जी
1: आवाज। जी,
0: जी और जैसे कि आपने बताया आप मध्य प्रदेश से हैं, तो वहाँ के मौसम के बारे बताइए, इस वक्त कैसा मौसम
1: मौसम
0: है वहाँ पर।
1: तो अभी तो सर मानसून का कुछ आता पता नहीं है, और अभी तो धूप खिली हुई है इधर।
0: जी,
1: इधर पानी कभी कभार आ रहा है अभी फिलहाल,
0: जी
1: तो मानसून का अभी कोई आता पता नहीं है। प्री मानसून बारिश चालू है अभी इधर।
0: जी जी ओह, तो जी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज।
1: फिल्म नीला आकाश
0: जी, और किन के साथ सुनना चाहेंगे आप ये गीत।
1: का, हमारे दोस्त है नाना डोंगरदेव नागपुर से,
0: जी,
1: और उदयभान ठाकरे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से,
0: जी
1: और
0: तो
1: मेरे फैमिली में मेरी बीवी सुनीता करमरकर,
0: जी,
1: और बेटा है हार्दिक, बेटी प्राची और तन्नू करमरकर।
0: हुकुम जी इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रस्तुत करते हैं आपका पसंद का ये गाना।
1: जी, थैंक यू। ओके,
0: जी धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम से। इस समय दोपहर बाद के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

दोस्तों, कभी कभी हम जीवन को कठिन सवाल समझते हैं, लेकिन दोस्तों जीवन बस एक बहती हुई धारा है, धुन है, एक प्यारा सा नगमा है, जिसमें कभी खोकर पाना पड़ता है और कभी पाकर भी हम बहुत कुछ खो देते हैं, पर जो शेष रह जाता है वो है साथ, प्रेम और स्मृति की कहानी।

दोस्तों, कभी कभी दिल के किसी कोने में एक नर्म सी टीस उठती है, जैसे कोई अपना बहुत याद आ रहा हो, जैसे हवा में किसी की महक अब भी ठहरी हो, जैसे धड़कनों में किसी की पुकार अब भी गूंज रही हो।

दोस्तों, ज़िंदगी एक मुसाफिर खाना है। यहाँ हर कोई आता है, कुछ पल ठहरता है और फिर अनजानी राहों पर निकल जाता है। कभी कभी हम ऐसे अपनों को खो देते हैं जिनका होना हमारी सांसों का हिस्सा था, और फिर हर पल, हर मोड़, हर तन्हाई बस यही पूछती है, जाने चले जाते हैं कहाँ।

दोस्तों, जीवन एक सफर है और इस सफर में हम चलते जाते हैं, कभी किसी के साथ और कभी किसी के बिना। मगर जब ये साथ छूट जाता है तो जो बचता है वो है यादें। यादें जो किसी तस्वीर में मुस्कुराती है, किसी सूने कमरे में गूंजती है और किसी गीत में फिर से लौट आती है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे है। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिल्लामनिनी रोखर हमांग इंग्रे तका लमक तेलंगी मीडियम व्यू तो 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्ज़ रामांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्नी निकोबारी प्रोग्राम तहांग
2: काले वानु ये होंग ये वांग जक्कर एल कुई जक्कु आला को आप करे अट काले एन मिन का गया ने ही मलेरिया इन वाहन लो तेन मलेरिया इन वाले तक किना पे ही अंत गम एनो फेलिस जंग कन मिसो के ये ही अटिला रन लेन रे गई मिहो ए पोय हगेन वहाव उनत मजरता नो व ये ही हारो उन हे के नु तयु ग मा ने ता सु पति ही उनत लेन इन कुति कुई नु टैंक की हे किन को कुई नु भनरी ये ही यी व तंग वानु ये इला रे ने हम तरे चेक का महाम रे मिहो इन तो हो मिहो इन गाइ छोल रन दे लाल ग मलेरिया इन वा हकोला आला रे ए यु ग मलेरिया लमकते इनगम स्टेट हेल्थ सोसाइटी अनगी मिन कातलोनी
1: इंगला हराब मिन कातलोनी तरन मिने महावत किरचो लमक खायने कुन बनामी ही गम चोंग रानी चंगा नंगचु माय बंदल दटकिलपुर इप्त माचु तरसीन अलाउ चिंगे इत सट कनरो तला पहु नलकने हडवाफ नजिब तने रनाय अलाउ चिंगे मिन इत सट कनरो तला पहु नरांग दटकिलपुर हे कन मिने सक माय बंदर अल तला करन हवन नचुश्री विजयपुरम असुनगरन रमिन एमवी संडिनल नंग

अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 11वीं कड़ी।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. हर बार की तरह आज भी हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लाए हैं आपके लिए। आजकल तो डेटा साइंस के बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या है ये डेटा साइंस, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, आगे बढ़कर क्या होगा, उसे सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए जानते हैं इस इंफॉर्मेशन

के बारे में आज के लम्हे प्रोग्राम में। डेटा साइंस एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा का अध्ययन, विश्लेषण और उसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके नए ज्ञान और अंतर्निहित संबंधों की पहचान की जाती है ये डेटा को संरचित और असंरचित रूप में उपयोग करके नए जानकारी और अद्यतित सूचनाओं का उपयोग करने की प्रक्रिया है। डेटा साइंस के माध्यम से आप बड़े डेटा सेट से नए निर्णय ले सकते हैं। मशीन लर्निंग

के नई जानकारी और अद्यतित सूचनाओं का उपयोग करने की प्रक्रिया है। डेटा साइंस के माध्यम से आप बड़े डेटा सेट से नए निर्णय ले सकते हैं। मशीन लर्निंग के माध्यम से वैश्विक मानक एल्गोरिथम्स का निर्माण कर सकते हैं और दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा नीतियों को बना सकते हैं। डेटा साइंस का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि आजकल डेटा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद होता है। ये संगठनों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, उद्योग में नए संभावनाएं प्राप्त करता है, ग्राहकों के अनुभव को सुधारता है और सामाजिक मुद्दों के समाधान में सहायता प्रदान करता है। डेटा साइंस में करियर के अवसर भी बहुत बढ़ते हैं। ये एक रोचक क्षेत्र है जहां आप डेटा साइंस, डेटा प्लानिंग, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट और बड़े डेटा विश्लेषक जैसे पदों पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही डेटा साइंस का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में जैसे वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं। डेटा साइंस का अध्ययन करके आप डेटा के बड़े वाले बाजार में रुचिकर करियर बना सकते हैं और आपको अच्छी सैलरी और प्रोफेशनल विकास की संभावनाएं मिलेंगी। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla spice.lamhe.vanilla। डेटा साइंस का महत्व विशेष रूप से बढ़ रहा है क्योंकि आजकल विभिन्न संगठन और उद्यम डेटा के माध्यम से और बेहतर निर्णय लेने के लिए डेटा साइंस का उपयोग कर रहे हैं। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग और सांख्यिकी के माध्यम से संगठित और असंगठित डेटा से नई जानकारी प्राप्त करके उद्योग, सरकार और सामाजिक माध्यम के लिए महत्वपूर्ण नई दिशाएं खोजने में मदद करती है। डेटा साइंस बड़ी मात्रा में डेटा का गहन अध्ययन है जिसमें कच्चे, संरचित और असंरचित डेटा से कुछ अर्थ निकालना शामिल है। बड़ी मात्रा में सार्थक डेटा निकालने के लिए डेटा की प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है और ये प्रोसेसिंग सांख्यिकीय तकनीकों और एल्गोरिथम, वैज्ञानिक तकनीकें, विभिन्न तकनीक आदि का उपयोग करके की जा सकती है। ये कच्चे डेटा से सार्थक डेटा निकालने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करता है। डेटा साइंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, रवि को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है लेकिन जब भी वो किताब खरीदना चाहता है तो वह हमेशा उलझन में रहता है कि उसे कौन सी किताब खरीदना चाहिए क्योंकि उसके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। यहाँ डेटा साइंस तकनीक उपयोगी होगी। जब वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खोलते हैं तो उसे अपने पिछले डेटा के आधार पर उत्पाद अनुशंसा मिलेंगे। जब वे उसमें से किसी एक को चुनते हैं तो उसे इस पुस्तक के साथ इस पुस्तकों को खरीदने की अनुशंसा भी मिलती है क्योंकि ये सेट सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। इसीलिए उत्पादों की सभी अनुशंसाओं और सामूहिक रूप से खरीदी गई पुस्तकों के सेट दिखाने डेटा साइंस के उदाहरण में से एक है। डेटा साइंस का सबसे उपयोगी अनुप्रयोगी सर्च इंजन है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम इंटरनेट पर कुछ खोजना चाहते हैं तो हम ज्यादातर सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। इसीलिए डेटा साइंस का उपयोग सर्च को तेजी से करने के लिए किया जाता है। डेटा साइंस का इस्तेमाल रियल टाइम में ट्रांसपोर्ट फील्ड जैसे ड्राइवरलेस कारों में भी किया जा सकता है। ड्राइवरलेस कारों की मदद से दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना आसान है। उदाहरण के लिए, चालक रहित कारों में प्रशिक्षण डेटा को एल्गोरिथम में डाला जाता है और डेटा वैज्ञानिक तकनीक की मदद से डेटा का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि हाईवे, संकीर्ण सड़कें आदि में गति सीमा क्या है और ड्राइविंग करते समय विभिन्न स्थितियों को कैसे संभालना है आदि। वित्तीय उद्योग में डेटा विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय उद्योगों में हमेशा फाइनेंस डीलिंग्स में हमेशा धोखाधड़ी और नुकसान के जोखिम का मुद्दा रहता है। इस प्रकार वित्तीय उद्योगों को कंपनी के लिए रणनीति निर्णय लेने के लिए नुकसान के जोखिम विश्लेषण को स्वचालित करने की आवश्यकता

इसके अलावा वित्तीय उद्योग भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा विज्ञान विश्लेषक उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये कंपनियों को ग्राहक के जीवन काल मूल्य और उनके शेयर बाजार की चाल का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए स्टॉक मार्केट में डेटा साइंस मुख्य भाग है। स्टॉक मार्केट में डेटा साइंस का उपयोग पिछले डेटा के साथ पिछले व्यवहार की जांच करने के लिए किया जाता है और उनका लक्ष्य भविष्य के परिणाम की जांच करता है। हर उद्योग डेटा की शक्ति का उपयोग करके नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अपने कौशल को निखार और 12वीं सदी के सबसे हॉट ट्रेंड का हिस्सा बने। तो दोस्तों, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla spice.lamhe.vanilla। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के सभा के शेष कार्यक्रम, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुनेंगे 4:45 पर। शाम 5 तमिल कार्यक्रम में बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा सिरुवर पोंगा। बंगला कार्यक्रम में आप आधुनिक गीत सुनेंगे 5:30 पर। संध्या 6 कृषि जगत कार्यक्रम में आप डॉक्टर मनोज कुमार से की गई बातचीत सुनेंगे बारिश में मृदा कर्षण। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे का आप आनंद ले पाएंगे 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएँ बताया जाएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में कार्यक्रम आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी। दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषिक कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी 8:00। 8:35 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा और 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे सरगम। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त 9:15 पर स्पॉटलाइट तथा 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये तो थे आज के सभा के शेष कार्यक्रम और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्रीटिप्स में जानेंगे

बागानी फसलों में काट छाट विषय पर जानकारी। 6:10 पर जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा घबराना शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरितमानस का नाम सुनेंगे। सुबह 7 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएँ। फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागिनी का आप आनंद ले सकेंगे 7:15 पर। इसी समय विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिचरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत पर्यावरण कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर गायक होंगे जगजीत सिंह। सुबह 9 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर आप नमगिरी पेट्टे कृष्णन का नादस्वरम वादन सुनेंगे। सुबह 10 SMS माई चॉइस का आप आनंद ले पाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय रहेगा दिन के 11:00। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत का आप आनंद ले सकेंगे। तेलुगु कार्यक्रम में 12:00 आप सुपरहिट गीत सुनेंगे। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में आप एक ही फिल्म के गीत सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:10 पर गायिका होंगी चित्रा सिंह। दोपहर 1:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा का समापन होगा, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक और फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो आप सुनेंगे 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा आप औरंग गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत पुराने गीत सुनेंगे। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम का आप आनंद ले पाएंगे 4:45 पर। 5:00 तमिल कार्यक्रम में कृषि संबंधी कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा चिरंतनी। संध्या 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम में डॉलीगंज के पशुपालक सीताराम यादव के साथ एक मुलाकात की जाएगी। 6:30 पर योगेश टिक्कू का लिखा नाटक मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था आप सुनेंगे। युवाणी में पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार। साथ ही रूपक सुनेंगे महा साहसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 7:30 पर रात 8:00 दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी। रोजगार समाचार और गौरवगण प्रसारित किया जाएगा 8:35 पर। रात्रि 10:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड तथा 9:45 पर इनसाइट कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हमने किया है फिल्म दो आंखें बारह हाथ के एक गीत के साथ। गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत रचना सुनील झा की है तथा संगीत बप्पी लहरी का।

लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और सपना मुखर्जी के युगल स्वरों में फिल्म यलगार का ये गीत। सुदर्शन फकीर के बोल को सुरों में पिरोया है चिन्नी सिंह ने।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनते हैं समीर की गीत रचना। गायक कलाकार है अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल। फिल्म है दिल तेरा आशिक।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழ் அமுதம். வணக்கம் நேர்களே,

अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: पसीने की स्याही से जो लिखते हैं खेतों में अपनी तकदीर, उन्हीं कर्म योगियों के लिए हाजिर है कृषि जगत की ये तस्वीर। जी हाँ किसान साथियों, इसी दमदार जज्बे को सलाम करते हुए मैं रागिनी स्वागत करती हूँ आप सभी किसान भाई बहनों का आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत में। जैसे कि किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत एक नेक विचार के साथ किया जाता है और नेक विचार है, जीवन में सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, धूप और बारिश को सहना पड़ता है और सही समय आने पर ही वह अंकुरित होकर एक विशाल और फलदार वृक्ष बनता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन की मुश्किलें और हमारी रोज की छोटी छोटी मेहनत हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जो इंसान सही दिशा में निरंतर प्रयास करता है और कठिन समय में भी धैर्य का दामन नहीं छोड़ता, उसकी खुशहाली की फसल एक ना एक दिन लहरा ही उठती है। किसान साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। चलिए अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और पूछ लेते हैं आज का प्रश्न, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज का प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए क्या कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग उचित है? किसान साथियों, इस प्रश्न को फिर एक बार दोहराते हैं। फलों को पकाने के लिए क्या कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग उचित है? किसान साथियों, आप इस प्रश्न का उत्तर आराम से सोचते रहिए, हम इस सवाल का सही जवाब कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परम...

0: परंपरा है, परंपरागत खेती।
1: चलिए किसान साथियों, कार्यक्रम के सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं हमारी आज की मुख्य चर्चा की ओर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर ही हमारी असली पूंजी है, तो आइए सुनते हैं भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान। भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब है अपनी भावनाओं जैसे गुस्सा, उदासी या खुशी को सही तरीके से संभालना। रोज ध्यान करने से इंसान के स्वभाव में ठहराव आता है। इससे छोटी छोटी बातों पर आने वाला गुस्सा और चिड़चिड़ापन धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाता है। ध्यान हमारे मन को अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि हम मुश्किल समय में भी घबराते नहीं हैं और सही फैसला ले पाते हैं। नियमित योग और ध्यान करने से शरीर में हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिससे इंसान अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस करता है। जब हमारा अपना मन शांत और भावनात्मक रूप से मजबूत होता है, तो परिवार के लोगों और आस पड़ोस के साथियों के साथ हमारे रिश्ते और ज्यादा मधुर और प्रेम पूर्ण बनते हैं। आज के समय में खेती किसानी की चिंता, मौसम का मिजाज और रोजमर्रा की भाग दौड़ से दिमाग में तनाव होना आम बात है। इसे दूर करने में योग और ध्यान बहुत मदद करते हैं। ध्यान लगाने से दिमाग में विचारों की उथल पुथल शांत होती है। वैज्ञानिक रूप से भी ध्यान करने से शरीर में कोर्टिसोल नाम का तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन कम होता है और मन शांत रहता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इससे सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त मजबूत होती है। सुबह सिर्फ 10 मिनट का मौन ध्यान दिमाग को पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे फालतू की चिंताओं और डर से मुक्ति मिलती है। मानसिक तनाव के कारण अक्सर रात को नींद नहीं आती। रात को सोने से पहले थोड़ा सा ध्यान या भ्रामरी प्राणायाम करने से दिमाग शांत होता है और बहुत गहरी नींद आती है। प्राणायाम करने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। अनिलोम विलोम प्राणायाम, एक नाक से सांस लेना और दूसरी से छोड़ना, या सीधे हमारे दिमाग की नसों को शांत करता है। भ्रामरी प्राणायाम, कानों को बंद करके भौरे की तरह गुंजन करना या मानसिक तनाव और सिर दर्द के लिए रामबाण है। आनापान ध्यान, शांत बैठकर केवल अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान टिकाना या मन को तुरंत शांत करने का सबसे सरल तरीका है। तो किसान साथियों, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान हमारे जीवन में संजीवनी बूटी का काम करते हैं, इसीलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे कि कैसे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वाकई जब हमारा मन शांत और मजबूत होगा, तभी तो हम खेती और जीवन के हर फैसले को सही तरीके से ले पाएंगे। अब समय हो चला है कार्यक्रम को और सुरीला बनाने का, आपके दिन भर की थकान को मिटाने और मन को तरोताजा करने के लिए। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सचमुच इस सुरीले गीत ने तो मन को बिल्कुल तरोताजा और आनंद से भर दिया। उम्मीद है हमारे सभी किसान साथियों को यह धुन बहुत पसंद आई होगी। चलिए इस ताजगी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के सफर को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं आज की हमारी बातचीत के साथ। बारिश में मृदा कर्षण क्यों और कैसे, यानी इस मौसम में खेतों की सही जुताई क्यों जरूरी है और इसे करने का सही तरीका क्या है, आइए शुरू करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार से की गई यह बातचीत।
1: कि अंदमान निकोबार में 2 से 5 मीटर गहरा ही मिट्टी है, और आपको एक रिसर्च के अनुसार मैं बताऊं, जैसे फिजिकल केमिकल डिकम्पोजिशन से हमारा जो मिट्टी बनता है 2.5 सेंटीमीटर बनने में कम से कम 10,000 वर्ष लगते हैं, और हम 1 सेंटीमीटर मिट्टी अगर बह जाए पर हेक्टेयर तो 1 साल में, तो सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान होता। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है और हम सब लोगों का ये पुनीत कर्तव्य है कि इस सॉयल कंजर्वेशन को, सॉयल संरक्षण को सब लोग करें, एकीकृत करें। अगर एक भी लोग बीच में अगर इस कड़ी को तोड़ देगा तो बहुत ही नुकसान होगा। अगर हमें अपनी पीढ़ी को अच्छे से आगे ले जाना है तो सॉयल कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है। आप जानते हैं कि नालों में इस टाइम देखते हैं तो मटमैला या धूसर रंग का पानी बहता है, तो ये समझ लीजिए कि उसके साथ मिट्टी बह रही है। और रिसर्च से पता चला है कि प्रति हेक्टेयर, जैसा कि हमारा कंडीशन है, लगभग 1 टन से 6 टन प्रति वर्ष वर्षा जल के साथ नाले में बह जाता है, कहीं कहीं तो इससे ज्यादा भी होता है। अगर एवरेज माने तो 3 टन पर हेक्टेयर, मतलब हर प्रति हेक्टेयर 3 टन मिट्टी हर साल बह जाती है। हमें इसलिए इसको नहीं पता चलता क्योंकि हमारा पास में ही पहाड़ है, पहाड़ से मिट्टियां थोड़ी थोड़ी आके उसको मेंटेन कर देती, इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि इतना बहा कि नहीं बहा। कभी कभी हम आप बताएं, जैसे कि एरिका नट का है, एरिका नट मतलब सुपारी के खेत में आप देख सकते हैं कि कितना मिट्टी बहा है, जैसे उसके जड़ को देख के हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ में मैं ये बताऊं कि 15 से 30 सेंटीमीटर लगभग 1 फीट तक जो मिट्टी होती है सबसे उपजाऊ होती है, और ये 1 फीट मिट्टी अगर हमारे बह के समुद्र में चली जाए तो हमारे लिए जो प्रोडक्टिव सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो खत्म हो जाएगा। जहाँ तक मिट्टी की बात है, इसमें मिनरल मिक्सचर 48%, जल 25%, हवा 25% तथा कार्बनिक पदार्थ 2% के लगभग होता है। अब हम आते हैं सॉयल कंजर्वेशन क्या है। तो सॉयल कंजर्वेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी जो भी मिट्टी है, बारिश हो रहा है,

0: तो बह जाती है, इसी को सुरक्षित करना ही सॉयल कंजर्वेशन या मिट्टी का संरक्षण कहते हैं। अब मिट्टी संरक्षण को समझने से पहले हम आपको सॉयल इरोजन मतलब मिट्टी का अपरदन कैसे होता है उसको हम थोड़ा बताना चाहते हैं। जैसे ही बारिश होता है तो मिट्टी पे गिरते ही उसमें स्प्लैश होता है, मतलब कि एक एक छोटी छोटी बूंदे की वजह से वो मिट्टी ढीली हो जाती है। उस ढीली होने की वजह से आप देखेंगे बारिश में चलेंगे तो आपके पैर के ऊपर छोटी छोटी मिट्टी का कण आ जाता है, तो इसको कहते हैं कि डिटैचमेंट हो गया। और फिर जो वो छोटे छोटे कण वहां से बह जाती है तो मतलब वो मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और फिर ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद एक दूसरे जगह डिपोजिशन मतलब वो जमा हो जाता है। सॉयल इरोजन पानी की वजह से कैसे होता है, तो जैसे रेन ड्रॉप होता है तो स्प्लैश होता है, तो उसके बाद एक परत निकल जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सीट इरोजन, मतलब कि एक परत निकल गई। और जैसे परत निकलने के बाद और कहीं कहीं आप देखते हैं कि छोटी छोटी नाली निकलती है, तो उसको हम रिल इरोजन कहते हैं। और इसी रिल इरोजन को हमें रोकना चाहिए। ये रिल इरोजन को अगर नहीं रोक पाए तो लास्ट में जाके यही गली इरोजन कहलाता है। सॉयल इरोजन के फैक्टर को हम बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या कारक है। सॉयल ऑफ नेचर मतलब मिट्टी का क्या नेचर हो सकता है, तो जैसे देखते हैं कि दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है कि बलुई मिट्टी है, तो देखते हैं बलुई मिट्टी सबसे ज्यादा इरोजन होगा, और उसी तरीके से काली मिट्टी है कम से कम इरोजन होगा। और रेनफॉल इंटेंसिटी हमारा जो बारिश कितना तेज होता है वो भी डिपेंड करता है कि जितना तेज होगा उतना ज्यादा इरोजन होगा। और आसपास का फिजियोग्राफी जैसे पहाड़ी एरिया हमारा, देखते हैं कि पहाड़ी एरिया इस वजह से मतलब उसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उस वजह से भी सबसे ज्यादा बारिश होती है, इरोजन होगा। साथ में हम किस तरीके का सॉयल मैनेजमेंट करते हैं और खेत में कैसे लैंड यूज प्रैक्टिस मतलब खेत का प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो भी कारक हो सकता है। तो सीरियस इफेक्ट हम कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है मिट्टी का, मतलब सबसे ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट जो है उसका लॉस होता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी, उत्पादकता, उपजाऊपन उसका खत्म होता है। और इसके साथ हम आपको बताएं कि अपरदन कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं। तो अपरदन कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, एक एग्रोनॉमिकल है, एक इंजीनियरिंग मेथड से। तो एग्रोनॉमिकल से आप जानते हैं कि एग्रोनॉमी मतलब सस्य विज्ञान, तो सस्य विज्ञान का मतलब है कि हम कल्टीवेशन करके कि किस तरीके का कल्टीवेशन कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने पहाड़ी एरिया में मिक्स क्रॉपिंग करते हैं कि अनारस लगाते हैं, इसके साथ साथ जहाँ केला पेड़ भी लगाते हैं और कुछ भी लगाते हैं तो मिक्स क्रॉपिंग, कहीं कहीं तो आप लोग एरिका नट सुपारी का पेड़ भी लगाते, तो मिक्स क्रॉपिंग की वजह से भी बहुत हद तक हम इसको रोकते हैं। और साथ में अपने खेत को कभी भी खुला न छोड़े, मतलब कि कुछ न कुछ उगाते रहें। और इसके साथ में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि आप स्लोप में खेती कर रहे हैं तो स्लोप में खेती का ऊपर से नीचे तक ऐसे जुताई न करें, उसको क्रॉस करें, जैसे कंटूर होता है उस तरीके से उस पे खेती करें, ढलान के विपरीत आप उसको खेती कर सकते हैं। और दूसरा मैं इंजीनियरिंग मेथड की बात करूं तो इसमें तीन तरीके से होगा, बंडिंग, बेंच टेरेसिंग और टेरेसिंग। तो मैं बंडिंग को बताऊं तो कंटूर बंड और ग्रेडेड बंड। कंटूर बंड को आप जानते हैं, बहुत लोग खेती करते हैं बस की सेम हाइट पे मेड़ बना के और उस पे खेती करते हैं। और ग्रेडेड बंड में क्या है कि जहां सेम लाइन ना हो तो थोड़ा थोड़ा दूर पे दो दो चार चार मीटर का ग्रेडेड बना के उसमें बंडिंग करके कर सकते हैं। और बंडिंग का हाइट आप अपने बारिश कैसा होता है, कितना कैपेसिटी है उस हिसाब से करें, और साथ में उसको पानी का ड्रेनेज लाइन भी बनाएं। और बेंच टेरेसिंग की है तो बेंच टेरेसिंग का यहाँ प्रयोग बहुत कम ही होता है, लेकिन फिर भी हम उसको बताना चाहेंगे कि लेवल टेरेसिंग, इनवर्ड स्लोपिंग टेरेसिंग और आउटवर्ड टेरेसिंग। मतलब लेवल टेरेसिंग का मतलब है कि आप एकदम समतल टेरेस बनाएं और उसके लास्ट में बंडिंग करें, और इनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि आप अंदर की तरफ जिधर हाल है उसके विपरीत अंदर की तरफ उसको स्लोप डालें। आउटवर्ड टेरेस मतलब कि स्लोप के साइड में ही थोड़ा सा स्लोप करके और बंडिंग बनाए और अच्छे से उसको जहां लास्ट हो वहां पे ड्रेनेज करके और नीचे एकदम लास्ट जैसे पहाड़ी एरिया के लास्ट में अच्छे से बंडिंग करें, जिससे कि पानी पहले रुके, परकुलेट हो, उसके बाद इजी रूप में नीचे जाए।
1: तो साथियों, कहते हैं ना कि मेहनत और सही तकनीक का जब मिलता है साथ तो बदल जाती है किसान की हर बात। आज ही इस वैज्ञानिक तरीके को अपनाएं और अपने खेत की मिट्टी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएं। किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे

बारिश में मृदाकर्षण क्यों और कैसे, इस संदर्भ में डॉक्टर मनोज कुमार से की गई बातचीत। चलिए किसान साथियों, कार्यक्रम के सफर को एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ की ओर ले चलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वस्थ मिट्टी ही समृद्ध खेती की असली आधारशिला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में 1 जून से लेकर 30 जून तक केंद्र सरकार द्वारा एक महा आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान। इस अभियान का मूल मंत्र है, मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, और खेती बचेगी तो हमारा किसान बचेगा। इस अभियान के तहत हमारे किसान भाइयों को क्या क्या बड़े फायदे मिल सकते हैं, आइए सुनते हैं एक और चर्चा। खेत बचाओ अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकना है। किसानों को जरूरत के अनुसार संतुलित मात्रा में ही खाद डालने के लिए जागरूक किया जा रहा है। खेत बचाओ अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य किसानों को जरूरत के अनुसार संतुलित मात्रा में ही खाद डालने के लिए जागरूक करना है। जिन किसानों के पास अभी तक अपनी जमीन का सॉयल हेल्थ कार्ड नहीं है, उनके कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को पता चलता है कि उनकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। खेतों के रसायनों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा जैविक कीटनाशक, हरी खाद और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बाजार में मिलने वाले नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशकों की पहचान कैसे करें, इस बारे में कृषि विभाग के अधिकारी सीधे गाँवों में जाकर किसानों को सिखा रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना से जोड़ने में मदद की जा रही है। इस अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों को रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल से रोकना है। अभियान के तहत खेतों में हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट के व्यवहारिक इस्तेमाल कैसे करें बताया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर पंचायत स्तर पर वैज्ञानिकों द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं। यदि किसी क्षेत्र में पानी की कमी या सूखे की स्थिति बनती है तो किसानों को ऑन द स्पॉट फसल विविधीकरण यानी कम पानी वाली वैकल्पिक फसलें चुनने की सलाह दी जा रही है। मॉनसून में बुआई शुरू करने से पहले इस अभियान के तहत विशेष जोर बीज उपचार पर दिया जा रहा है। किसानों को सिखाया जा रहा है कि कैसे बीज बोने से पहले उनका जैविक उपचार करके फसलों को शुरुआती फंगस और कीड़ों से बचाया जा सकता है, जिससे फसलों की बर्बादी रुकती है। इस अभियान के अंतर्गत कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को खुद असली और नकली उत्पादों की पहचान करने के आसान तरीके सिखा रहे हैं, ताकि किसान धोखाधड़ी से बच सके। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस अभियान के तहत ग्रामीण विकास पर भी बड़ा जोर दिया है। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए जैविक खाद बनाने और कृषि आधारित लघु उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। गाँव के बेरोजगार युवाओं को आधुनिक कृषि यंत्रों को चलाने और कृषि क्लिनिक खोलने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इस अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य मिट्टी की सेहत को बचाना है। किसानों को अंधाधुंध यूरिया और रासायनिक खादों के उपयोग से रोकना है। इसके बजाय पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जा रहे हैं, ताकि किसान केवल उतनी ही खाद डाले जितनी मिट्टी को जरूरत हो। बाजार में बिकने वाले नकली कृषि उत्पादों से किसानों को बचाना है। हर साल नकली दवाओं और बीजों के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा खेतों में हरी खाद उगाने और केचुआ खाद के इस्तेमाल को बताया जा रहा है, ताकि मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति वापस लौट सके। किसान साथियों, खेती को रोजगार का बड़ा जरिया बनाना है। हमारी मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, हमारी धरती माँ है। यही हमें अन्न देती है, जीवन देती है। लेकिन रासायनिक खादों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग से हमारी मिट्टी की सेहत कमजोर हो रही है। इस अभियान का मंत्र है, कम खाद, सही खाद, समझदारी से खाद, मिट्टी की जांच कराएं, संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करें, हरी खाद और जैविक विकल्प अपनाएं। अभियान के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड, जल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। आइए मिट्टी बचाएं, उपज बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती को सुरक्षित बनाएं। भारत का किसान, भारत की शक्ति। किसान साथियों, अभी आप चर्चा सुन रहे थे। बातों और जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अब समय हो चला है कार्यक्रम के उस खास पड़ाव

का जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, अब समय है उस प्रश्न का उत्तर जानने का जो हमने कार्यक्रम के बिल्कुल शुरुआत में आपसे पूछा था। हमारा आज का सवाल था कि फलों को पकाने के लिए क्या कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग उचित है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है बिल्कुल नहीं। कैल्शियम कार्बाइड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और फलों को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल हमारे देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

0: और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: चलते चलते बस यही कहूंगी किसान साथियों, खेतों में महकती रहे आपकी मेहनत की ये क्यारी, स्वस्थ रहे आप और सदा लहलहाए फसल आपकी सारी। जी हाँ किसान साथियों, इसी दुआ के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर होगी एक नई शुरुआत, तब तक के लिए अपनी इस दोस्त रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, यादें हैं, दिल में आज भी तेरी ही बातें हैं। वक्त गुजर गया मगर ये सच है, मेरी हर धड़कन में तेरी ही आहट है।

बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

दिल की तन्हाई को आवाज़ बना देते हैं, दर्द जब हद से गुज़रता है गा लेते हैं। दिल की तन्हाई को हम अपना बना बैठे हैं, तेरी यादों को ही दुनिया बना बैठे।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल्प।

याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जब जब तन्हाई का मौसम आएगा तेरा नाम दिल को बहुत सताएगा। लाख रोकेंगे हम इन आँखों को मगर याद तेरी आएगी और रुलाएगी।

महफिल है मेरी ये तन्हाइयाँ, महफिल है मेरी ये तन्हाइयाँ, यादों ने सजाई है परछाइयाँ। लोग समझते हैं मैं मुस्कुरा रहा हूँ, कौन देखे दिल की गहराइयाँ।

दुखी मन मेरे अब किसी अपना हाल सुनाऊं, जिसे चाहा था दिल से उसी को भूल न पाऊं। भीड़ में सब अपने लगते हैं मगर तन्हाई में हर चेहरा बेगाना ही पाऊं।

हर दिल जो प्यार करेगा दर्द भी उसका यार होगा। मोहब्बत की राह में कभी बाहर तो कभी इंतज़ार होगा। हंसते हुए भी आँखों में नमी छुपानी पड़ेगी। जिसे सच्चा इश्क होगा उसे खोने का डर बार बार होगा।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम दर्द भरे नगमे सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज के इस सभा के कुछ कार्यक्रमों के बारे में। 7:15 पर आप मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं सुन पाएंगे। 7:20 का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी। दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी रात्रि 8:00। 8:35 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम का आप आनंद ले सकेंगे। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले इस सभा के कुछ शेष कार्यक्रम। और अब कल सुबह के कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें, कल सुबह 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्रीटिस्ट में जाएंगे बागानी फसलों में काट छाट विषय पर जानकारी। पर 6:10 पर जलयानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा घबराना शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान और सुबह 7:00 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी का आपन दे पाएंगे 7:15 पर। इसी समय विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। सात बजकर 30 मिनट पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सुनेंगे पर्यावरण कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर गायक होंगे जगदीत सिंह। 9:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम

0: आप सुनेंगे तराने सुहाने। सुबह 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा एसएमएस माय चॉइस। ग्यारह बजकर 30 मिनट पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भोले बिस्तरे गीत का आप आनंद ले सकेंगे। ये तो थे कल सुबह में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को वैश्विक विकास का आधार बनाने का आह्वान किया। सांसद विष्णुपद रे ने प्रातापुर प्रधानमंत्री आवास योजना में ईएमआई वसूली पर सवाल उठाए। शोलबे गांव में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत टिकाऊ कृषि, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, ब्रह्मास्त्र और जीवामृत पर किसानों को विस्तृत जानकारी दी गई। और नीट परीक्षा 2026 के लिए प्रशासन कल से छात्रों को बड़ी राहत देते हुए निःशुल्क परिवहन सेवा शुरू करेगा।

सांधे समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करे। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। सांसद विष्णुपद रे ने दक्षिण अंडमान के प्रात्रापुर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 213 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लाभार्थियों की शिकायतों को उठाते हुए कैनरा बैंक से आवास इकाइयों के पूर्ण निर्माण और औपचारिक हस्तांतरण तक ईएमआई वसूली तत्काल स्थगित करने का आग्रह किया है। सांसद ने कहा कि श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद, एनबीसीसी और लाभार्थियों के बीच हुई बैठकों में यह सहमति बनी थी कि फ्लैटों का निर्माण पूरा होने और कब्जा मिलने के बाद ही ईएमआई वसूली शुरू होगी। इसके साथ ही परियोजना में देरी से उत्पन्न अतिरिक्त ब्याज भार को कार्यान्वयन एजेंसियां वहन करेंगी या उसका समुचित समाधान करेंगी। उन्होंने बताया कि परियोजना अभी अधूरी है और लाभार्थियों को कब्जा भी नहीं मिला है। इसके बावजूद उनके बैंक खातों से ईएमआई कटौती शुरू हो गई है। श्री रे के अनुसार एसवीपीएमसी ने भी 13 और 23 अप्रैल को बैंक को पत्र लिखकर ईएमआई स्थगित करने का अनुरोध किया था। परियोजना अब 30 दिसंबर तक पूर्ण होने की संभावना है। सांसद विष्णुपद रे ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री से हस्तक्षेप तथा परियोजना में हुई देरी

की जांच कराने की भी मांग की है। प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मुख्य भूमि के संस्थानों में द्वीप समूह के छात्रों के लिए आरक्षित विभिन्न व्यवसायिक, तकनीकी एवं गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों सहित बीई बीटेक लेटरल एंट्री सीटों के आवंटन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिन छात्रों ने अब तक आवेदन नहीं किया है उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित करने की अवधि 24 जून की मध्य रात्रि तक बढ़ा दी गई है। यह निर्णय आरक्षित सीटों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उप सचिव उच्च शिक्षा ने स्पष्ट किया है कि 24 जून के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन की तिथि में और विस्तार नहीं किया जाएगा, इसलिए इच्छुक छात्रों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, खेत बचाओ अभियान और निशुल्क परिवहन सेवा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से 16 जून को फरारगंज ब्लॉक के शोलबे 14 गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक डॉ पीके सिंह ने की। इस अवसर पर वैज्ञानिक एक्वाकल्चर चितरंजन राउल, पौध संरक्षण विषय विशेषज्ञ मोहित, ग्राम प्रधान ऑगस्टिन राजकुमार, कृषि अधिकारी गायत्री तथा एटीएमए प्रतिनिधि आरती उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कुल 18 किसानों ने भाग लिया। डॉ सिंह ने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक एवं अंधाधुंध उपयोग से कृषि भूमि की घटती उत्पादकता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ढांचा को हरी खाद के रूप में अपनाने, एनपीके उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वैज्ञानिक चितरंजन राउल ने धान की खेती में एजोला के उपयोग, जैव उर्वरक के उपयोग में इसकी भूमिका तथा जलीय खरपतवारों एवं मछली अपशिष्ट से खाद एवं तरल जैव उर्वरक तैयार करने की जानकारी दी। पौध संरक्षण विषय विशेषज्ञ मोहित ने ब्रह्मास्त्र, जीवामृत, ट्राइकोडर्मा बीटी तथा नीम तेल के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और सब्जी व बागवानी फसलों में कीट एवं रोग नियंत्रण के उपायों पर किसानों से संवाद किया। 21 जून को राजधानी श्री विजयपुरम में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों के लिए प्रशासन ने निशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत सरकार द्वारा संचालित बस, फेरी एवं जहाज सेवाओं के माध्यम से अभ्यर्थियों को यह सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा केवल वैध नीट यूजी 2026 प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपलब्ध होगी। प्रशासन के अनुसार यह सुविधा कल से 24 जून तक प्रभावी रहेगी। इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को उनके निवास स्थान से परीक्षा केंद्र तक तथा परीक्षा केंद्र से वापस निवास स्थान तक निशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे। महाविद्यालय प्रशासन के अनुसार प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। प्रवेश विवरणिका तथा पात्रता संबंधी अन्य जानकारी भी सीसीएपी पोर्टल पर उपलब्ध है। प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का आवेदन सीधे अथवा ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन

करना होगा। यात्री जहाज एमवी कैम्बल बे कल सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौड़ी तथा कैम्बल बे होते हुए चेन्नई के लिए रवाना होगा। यात्रियों की बोर्डिंग प्रक्रिया कल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक चलेगी। निर्धारित प्रस्थान समय से 1 घंटा पहले बोर्डिंग बंद कर दी जाएगी और विलंब से पहुंचने वाले यात्रियों को जहाज पर सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्गो जहाज एमवी चुगलुम 25 जून को दोपहर 4 बजे जंगलीघाट जेटी से कैम्बल बे के लिए रवाना होगा। यह जहाज कार्निकोबार, चौरा, तेरेसा, कछाल एवं ननकौड़ी होते हुए गंतव्य तक पहुंचेगी तथा संबंधित बंदरगाहों पर माल उतारने और लोड करने के बाद राजधानी श्रीविजयपुरम के लिए वापसी करेगी। जहाजरानी सेवा निदेशालय के अनुसार इस यात्रा के लिए कार्गो की बुकिंग कल से सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक वाणिज्यिक शाखा में की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को वैश्विक विकास का आधार बनाने का आह्वान किया। सांसद विष्णुपद रे ने प्रातापुर प्रधानमंत्री आवास योजना में ईएमआई वसूली पर सवाल उठाए। शोलबे गांव में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत टिकाऊ कृषि, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, ब्रह्मास्त्र और जीवामृत पर किसानों को विस्तृत जानकारी दी गई और नीट परीक्षा 2026 के लिए प्रशासन कल से छात्रों को बड़ी राहत देते हुए निःशुल्क परिवहन सेवा शुरू करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 और 40 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होगी। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार सागर के तटों पर तेज हवाओं के कारण अंडमान तथा निकोबार तटों पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर हो सकती है, जिसके चलते समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाएं। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध भागों में तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। ये था मौसम का हाल। लीजिए अब सुनिए जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों के यात्रा कार्यक्रम। MV रानीचंगा 19 तारीख को सुबह 7 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 20 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। लिटिल अंडमान जाने के लिए MV सेंटिनल 18 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी दिन रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। MV कालीघाट लिटिल अंडमान और कार निकोबार की यात्रा पर 19 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 20 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV सेंटिनल 25 तारीख को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान, कार निकोबार, चौरा, तिरेसा, कचाल, ननकोरी, माकाचोहा और अरफा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 18 तारीख को रात 8:30 पर कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस पहुंचेगा।

एमवी कालीघाट नैनकोरी होते हुए कैमल ब्रिज जाने के लिए 23 तारीख को सुबह 9 बजे श्रीविजयपुरम से जाएगा और 25 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल ब्रिज से छूटकर नैनकोरी होते हुए श्रीविजयपुरम आएगा। एमवी हटवे कल सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप और नोंगलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्रीविजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम पहुंचेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी रानी लक्ष्मी कल सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम आएगा। एमवी बाराटन कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्रीविजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्टेट आइलैंड कल दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप के लिए श्रीविजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्रीविजयपुरम से चलेगा। जलयान 18 तारीख को शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम पहुंचेगा। एमवी कमोटा कल शाम 5 बजे स्वराज द्वीप के लिए श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 19 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

जन सूचनाएं, इसके अंतर्गत सुनिए एक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से। गीत समीर के, संगीत हिमेश रेशमिया का है तथा गायक कलाकार है शान, सुनिधि चौहान और बाबुल सुप्रियो।

लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वरों में फिल्म माशूका का ये गाना। गीत रचना जलीस शेरवानी का है तथा संगीत साजिद वाजिद का।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जीवन में हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। कभी परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में होती है तो कभी हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है। लेकिन याद रखिए, कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाने आती है। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सुनहरी सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार संघर्षों के बाद सफलता भी निश्चित रूप से मिलती है। इसलिए अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें, मेहनत करना कभी ना छोड़े और परिस्थितियों के आगे हार ना माने। समय बदलता है, हालात बदलते हैं और निरंतर प्रयास करने वाले लोगों की किस्मत भी बदल जाती है। मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और स्वयं पर भरोसा रखिए। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, चिंता या एंजाइटी एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक तनाव, डर, घबराहट या भविष्य की चिंताओं से घिरा रहता है। कभी कभी चिंता होना सामान्य है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बनी रहे और दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगे तो यह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। चिंता के सामान्य लक्षणों में बेचैनी, दिल की धड़कन तेज होना, अत्यधिक पसीना आना, नींद ना आना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और नकारात्मक विचार शामिल है। दोस्तों, योग चिंता को कम करने का एक प्रभावी और प्राकृतिक उपाय माना जाता है। योग शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। नियमित योग अभ्यास से तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है और मन को शांति मिलती है। योग के दौरान किए जाने वाले अभ्यास मन को स्थिर करने और मानसिक तनाव को दूर करने में विशेष रूप से सहायक होते हैं। दोस्तों, योग का नियमित अभ्यास आत्मविश्वास बढ़ाता है, भावनात्मक संतुलन बनाए रखता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। हालांकि यदि चिंता बहुत अधिक हो या लंबे समय तक बनी रहे तो योग के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना भी आवश्यक है। दोस्तों, योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो मन को शांति और जीवन को संतुलन प्रदान करती है। इसलिए स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन के लिए नियमित योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। दोस्तों, आज बुधवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

हर बार जब आसमान में बादल घिरते, वह अपनी बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बारिश को निहारती रहती। लेकिन इस बार की बारिश उसके लिए कुछ अलग थी, क्योंकि यह उसे किसी की याद दिलाती थी, कबीर की। करीब 5 साल पहले की बात थी, नैना कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। एक दिन तेज बारिश के कारण बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी। सभी लोग बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक लड़का अपनी छतरी लेकर उसके पास आया और बोला,

तेज बारिश के कारण बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी। सभी लोग बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक लड़का अपनी छतरी लेकर उसके पास आया और बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो हम यहाँ छतरी साझा कर सकते हैं। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ हाँ कर दी। रास्ता छोटा था लेकिन बातचीत लंबी हो गई। उस दिन दोनों ने एक दूसरे का नाम जाना। वह लड़का कबीर था। दोस्तों, इसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैफे में, तो कभी उसी बस स्टॉप पर। दोनों की दोस्ती इतनी सहज थी कि उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कब उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे।

0: दोस्तों, कबीर को नैना की मुस्कान सबसे प्यारी लगती थी और नैना को कबीर की आदत कि वह हर छोटी बात को भी खास बना देता था। अगर नैना उदास होती तो कबीर उसे उसके पसंदीदा फूल ला कर देता। अगर कबीर किसी बात से परेशान होता तो नैना घंटों उसकी बातें सुनती। दोस्तों, एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, दोनों एक झील के किनारे बैठे थे। कबीर ने अचानक कहा, अगर एक दिन मैं बहुत दूर चला जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगी? नैना हंसते हुए बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही सोच रखा था। कॉलेज खत्म होने के बाद कबीर को विदेश में नौकरी मिल गई। यह उसके सपनों की नौकरी थी, लेकिन इसका मतलब था कि उसे नैना से दूर जाना होगा। जाने से पहले कबीर ने नैना से मिलने की इच्छा जताई। दोनों उसी झील के किनारे मिले जहां वे अक्सर बैठा करते थे। कबीर ने कहा, मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। नैना की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, अगर उनमें सच्चाई हो।
1: या

दोस्तों शुरुआत में दोनों रोज बातें करते थे, फिर काम बढ़ता गया, समय कम होता गया, कई बार दिनों तक बात नहीं हो पाती। लेकिन हर जन्मदिन, हर त्योहार और हर बारिश के मौसम में उनका एक संदेश जरूर आता। दोस्तों समय बीतता गया। 5 साल बाद एक दिन नैना हमेशा की तरह बारिश देख रही थी, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, बारिश अभी भी पसंद है? नैना का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह आवाज कबीर की थी।

दोस्तों कुछ घंटों बाद कबीर नैना के सामने खड़ा था। वह पहले से थोड़ा बदला हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान वही थी। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। कभी-कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती। कबीर ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वह तस्वीर उस दिन की थी जब वे पहली बार बारिश में मिले थे। उसने कहा, मैंने इसे 5 साल तक संभाल कर रखा। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने दुनिया के कई शहर देखे, हजारों लोगों से मिला, लेकिन हर जगह मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई। शायद घर कोई जगह नहीं होता, घर वह इंसान होता है जिसके पास लौटने का मन करे। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। नैना ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उस पल उन्हें समझ आ गया कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो हर समय साथ रहे, बल्कि वह है जो समय, दूरी और परिस्थितियों के बावजूद दिल में उसी तरह जीवित रहे। दोस्तों, और उस बारिश की आखिरी शाम दो अधूरी प्रतीक्षाएं आखिरकार एक खूबसूरत कहानी बन गई।

दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे।

0: interviewer was Nitin Gokhale, senior journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: अभी आप दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने की उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे।
2: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.
3: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर अप टू 80,000।
4: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:36 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। उद्योग निदेशक अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा MSE ODR योजना के अंतर्गत लीगल कंसल्टेंट के एक पद पर अल्पकालिक संविदा आधार पर मार्च 2027 तक नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पद के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना तथा न्यूनतम 50% अंक होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही न्यायालय, अर्ध न्यायिक निकायों अथवा मध्यस्थता एवं सुलह से संबंधित मामलों में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव वांछनीय है। चयनित अभ्यर्थी को प्रतिमाह 80,000 रुपये समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र तथा आवश्यक शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियों सहित 19 जून 2026 को साय 4 बजे तक निदेशालय उद्योग श्री विजयपुरम में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निदेशालय उद्योग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से संपर्क करें। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
2: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if

0: सेक्टर पर के जी सी एन जी में बाय ऑफर अप टू 80,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्ते लागू।
2: लीजिए अब सुनिए संवित स्वरों में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप संगीत स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के

0: साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार

0: के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।

0: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रूपये पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रूपये से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
3: Excellency, hum jante hain ki maritime trade ki duniya mein Bharat ke lakhon seafarers aaj duniya ke alag alag samundar mein apni sevaen de rahe hain, vishv ki pragati mein bahut bada yogdan de rahe hain aur main samajhta hu ki unki suraksha bhi utna hi mahatvapurna hai. Mujhe pura vishwas hai ki samjhote mein seafarer ki suraksha bhi

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हों, युद्धपोत हों या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी है। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।
1: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कलपुर्जों पर

0: हमारी निर्भरता को कितना कम किया है।
1: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने की बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। इस प्रकार अपने बनाए हुए रेडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर्स सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है, उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना। ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इससे बनाया है, तो ये जो एक है ये बहुत

0: अपना खुद कर रहा और उसको पेनिट्रेट करना, ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो, आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इससे बनाया है। तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो आपको 15.6%, वो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा, और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 43,000 करोड़, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 करोड़ है, प्राइवेट प्रोडक्शन, यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 करोड़ में प्राइवेट का contribution है, that's almost about the same as what was the total defense production of 2014.
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं, एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इसे 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास है, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनियों को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इम्पोर्टर हुआ करते थे, इम्पोर्टर अभी हम रहेंगे 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कम्प्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे, जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे कम्प्लीट नहीं हो जाएंगे हम इम्पोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए, हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ, कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
0: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के, DRDO ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए तो जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, वो फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसके बाद फैक्ट्रीज बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है, 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट फॉर मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्रीज चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, L&T हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 1,78,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है, और ये

0: तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो। तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने मार्क वन बनाया है, आपने हमने ही बनाया है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस सप्लाई स्पेयर उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड है जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, आईआईटी है, वहां के बच्चे बड़े होशियार हैं, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप है वो आगे आते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम यहाँ, जैसे आप कह रहे हैं, वी आर द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कई एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी। ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टेल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा हो 2 साल हो गए, 2 इंजन नहीं आ पाए, 2 साल हो गए। क्यों? हमने उनके भरोसा, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे, इसमें लगे। पर अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर एमसीए प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब 4 गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इम्पोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल, आर्टिलरी गन इम्पोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है आईएनएस विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंतर, उसके 3 आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इम्पोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इम्पोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है, तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी UAV बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इम्पोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में 3 कंपनियों को, 3 कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा है कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इम्पोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की 2 श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं

0: पहले भी बता रहा था, 8-10 साल हमें ये पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी, तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी, आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
2: देखिए, ड्रोन वॉरफेयर अब समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडॉप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, इस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पर पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करते, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इसलिए आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें, जरूर चाहे स्टार्टअप के पास आपके पास चाहे नेविगेशनल डिस्ट्रिक्ट हो या उसके सीकर हो या उसके पास फोटोग्राफिक डिस्ट्रिक्ट, बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा, ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस बहुत चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम ये हमारे लिए है, इस आत्मनिर्भरता वो भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे हैं, और वो उस मार्केट का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशन है, तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसलिए रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए, UAVs को मद्देनजर रखते हुए, न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे स्पेस है, नेविगेशनल है, जो जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, हर एक चीज के साथ मिल करके अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, जो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम भारत के अंदर बनाए, और इसको लिटरली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है लिटरली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बैनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है?
0: इसके कई सारे आंसर है। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी, फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और ये मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी, और सबसे बड़ी बात अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे, जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं, R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख

0: आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा। मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी जब आप ग्रो करेंगे तो। जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज्ड टास्क, तो आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए। और वो ट्रेन्ड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेन्ड मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है। कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी। जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है। और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा वो। जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको। MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया। साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पे इम्पैक्ट करता है सबको, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इम्पैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
2: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है। अगर नंबर वन GDP वाला अगर $22 ट्रिलियन का है, नंबर टू तकरीबन 17-18 ट्रिलियन का है, तो नंबर तीन 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है ये हमारा देश है और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए। लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है निंदा गई, उनको नुकसान होगा। ये वो बात है और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। आज देखिएगा कौन सा है वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, फटाफट कौन से जनरेशन है 1 2 3 4 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इम्पोर्ट किया, 4.5 जनरेशन 5th 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब आप भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया है, इसको किस तरह जो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर्स इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने एक बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने UAV है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स है, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए और ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, विश्व में जाकर के सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक US के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है। जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब वेन यू ट्रेन वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मुकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मुकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इसे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
0: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के

0: रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से दो एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवार्ड्स द शिप, जमीन से सामने के जो पोते मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मीनिया को आर्म कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाइप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाइप है विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन की, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यहीं इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई, उसकी कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहां बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 178,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है। और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करने चाहिए, 30 साल लग गए जी 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहां कि आपने ये बनाना है, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे है और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कुछ सिखाएगा नहीं, कोई देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो, तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे अब जी बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D वेरी स्ट्रांग, R&D अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हैं, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रांग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
2: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा कि ये हमारा है और हमने इसको आगे दर्जे का बनाना है। अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बनाया है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर अगले 5 साल के अंदर, एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इसमें रात्रि के 10:01 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म मैरीगोल्ड से। गायक है शान, गीत रचना जावेद अख्तर की।

लीजिए अब सुनिए, हमजा और तुलसी कुमार को फिल्म अगर में शायद कादरी के गीत को संगीत दिया है मिठुन ने।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनते हैं समीर की गीत रचना। गायक कलाकार है उदित नारायण और अलका याग्निक। फिल्म है ऐतराज़।

लीजिए अब सुनिए फिल्म अलग का ये गाना। गायक कलाकार है शाना और वसुंधरा दास। राहुल सेठ और नुसरत बद्र के गीत को संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

लीजिए अब सुनिए प्रीतम के संगीत निर्देशन में तैयार समीर की गीत रचना, फिल्म है अनकही, गायिका है श्रेया घोषाल।

बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या छींटे पड़ेंगे। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार सागर के तटों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे कल तक समुद्र में ना जाएं। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों में तेज हवाओं के साथ बुछारें पड़ेंगी। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं को मौसम संबंधी अनुमान

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026 सुबह के समय 5:28 और 33 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: सुबह के समय 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए ये अनमोल विचार।
1: इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके शब्दों और व्यवहार से होती है। चेहरा वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन संस्कार और स्वभाव हमेशा याद रह जाते हैं।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये मातृ वंदना।